सुप्रभात, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 8, तदनुसार 29 जून 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने वाले हैं। अब शुरू होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार बुलेटिन।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री

0: ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। आज सुनिए वार्ता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें के साथ आपका रेडियो दोस्त संजीव हाजिर है। आज हम इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के प्रकोप या बीमारियों के कारण फसल खराब होने पर किसानों को वित्तीय सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर रखना और उन्हें खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। किसान भाइयों, इस योजना में कम प्रीमियम के साथ पूरा कवरेज देने की व्यवस्था भी की गई है। इस योजना में खरीफ की फसल के लिए मात्र 2% और रबी की फसल के लिए मात्र 1.5%, जबकि व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम दर निर्धारित किया गया है, जो काफी कम है। इस योजना से बीमित फसलों को आप सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, आंधी तूफान और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान का कवर कर सकते हैं। अगर फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल को भी 14 दिनों तक चक्रवात या बेमौसम बारिश से नुकसान पहुंचती है तो भी आपको बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं और अपनी दावा, गणना और भुगतान पूरी तरह से कर सकते हैं, जो कि डिजिटल है। इसकी वजह से बिचौलियों की इसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। इस योजना के तहत जोखिम कम होने से किसानों की आय में स्थिरता बनी रहती है, जिससे कृषि में नए और आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो किसान भाइयों, आप भी अपने फसलों का बीमा जरूर करा लें, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली क्षति से नुकसान की भरपाई आपको मिल सके। इसी जानकारी के साथ सभी श्रोता मित्रों को कार्यक्रम खेती की बातें में अपने रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है चिंतन। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी असफलता क्यों ना आए, हमें अपने दृढ़ संकल्प को सदा मजबूत बनाए और अपना ध्यान मंजिल की ओर केंद्रित रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल सफलता मिलनी तय है। ये था आज का चिंतन।

एफएमके 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं देश वंदना।

अनूप जलोटा और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे भजन। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है रामचरितमानस। कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देवी ने सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगी। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचान कर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगी कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आइए आपको इस सभा में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 से आप सुनेगा कार्यक्रम जरा सुनिए। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा नलिन गोयल की भेंट वार्ता, घरों की छतों में सोलर प्लेट लगाने के फायदे, इनसे बातचीत करेंगे विवेक आदित्य। 7:20 का समय होगा लोकगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा भोजपुरी में गीत, कलाकार होंगी शारदा सिन्हा। बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि सुनेगा 7:35 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा नजरुल गीती, कलाकार होंगे मानवेंद्र मुखर्जी। दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुनेगा 7:50 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा डॉक्टर DS वर्मा की भेंट वार्ता, पेट से जुड़ी आम समस्या, इनसे बातचीत करेंगे राजेश।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 8 बजे से सुनेगा समाचार प्रभात। 8:15 का समय होगा मॉर्निंग न्यूज का। आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले सुबह 8:30 से सुनेगा प्रादेशिक समाचार। 8:45 का समय होगा फिल्म संगीत का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 9 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 9:05 का समय होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना का।

शास्त्रीय संगीत ये कार्यक्रम सुनेगा 9:30 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन, राग होगा श्रीमत भैरव। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 10 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 10:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। 10:10 से सुनेगा विश्व दर्पण। फिल्म संगीत सुनेगा 10:20 से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 11 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 11:05 का समय होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 12 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 12:05 का समय होगा फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत का। शास्त्रीय संगीत ये कार्यक्रम सुनेगा 12:30 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा पंडित भजन सपोरी का संतूर वादन, राग होगा पटदीप। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दोपहर 1 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 1:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। 1:10 से सुनेगा प्रादेशिक समाचार जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:20 का समय होगा फिल्म संगीत का।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दोपहर 2 बजे से सुनने का मिड डे न्यूज 2:15 का समय होगा दोपहर समाचार का। फिल्म संगीत सुनने का 2:30 से आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार सुनने का 2:55 से 3 बजे का समय होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। 3:30 का समय होगा उपशास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा अमजद अली खान का सरोद पर बजाया पहाड़ी धुन, और फिर सुनेगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया धुन मिस्र खमाज। 3:45 का समय होगा झारखंड के लोकगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा संताली गीत, कलाकार होंगी जोबा मुर्मू। आकाशवाणी के रांची केंद्र से ले समाचार मुख्यांश सुनेगा 4 बजे से। बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा सुनेगा 4:02 से। ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जरा सुनिए। कार्यक्रम में ये सुनते हैं नलिन गोयल की भेंट वार्ता, घरों की छतों में सोलर प्लेट्स लगाने के फायदे। इनसे बातचीत कर रहे हैं विवेक आदित्य।

0: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए,
0: जरा सुनिए।
1: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
0: जरा सुनिए,
2: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम जरा सुनिए में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपके समक्ष आए हैं एक अलग विषय के साथ, और वो विषय जुड़ा है सौर ऊर्जा से। जी हाँ श्रोताओं, सौर ऊर्जा, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रकार भी माना जाता है। और इस ऊर्जा की सबसे खास बात यह है कि इस ऊर्जा के उत्पादन में किसी भी प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी नहीं होता है। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज के अंक में हम एक जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें हम सभी जानेंगे कि कैसे हम अपने घरों में या फिर छत के ऊपर सोलर प्लेट लगाकर सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी नहीं होगा। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने आज के मेहमान का। नमस्कार महोदय, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
3: नमस्ते विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए। मेरा नाम नलिन गोयल हुआ है, मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूँ और मैंने मास्टर्स अपना रिन्यूएबल एनर्जी में किया है टेरी यूनिवर्सिटी से, और मैं इस फील्ड में पिछले 25 साल से हूँ। और अपने काम में सौर ऊर्जा को मैं काफ़ी महत्व देता हूँ, और काफ़ी इम्पोर्टेंस देने के चलते मैं अपनी बिल्डिंग्स में इसके प्रयोग के लिए काफ़ी अथक प्रयास करता हूँ।
2: जैसा कि आपने बताया कि आप सौर ऊर्जा को काफी महत्व देते हैं, फिर बातें अगर सौर ऊर्जा की जाए तो ये सौर ऊर्जा क्या है और आजकल ये इतना जरूरी क्यों हो गया है?
3: सौर ऊर्जा है जो हमारा सूर्य है, जो सन है, उसकी जो रेज हैं उसमें एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को मानव ने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का एक तरीका और टेक्नोलॉजी निकाला था लगभग 100 साल पहले। उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। ये हुआ सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का ये एक प्रकार हुआ। सौर ऊर्जा और भी कई चीज़ों में होता है, बट अभी हम लोग उसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। ये आज के समय में जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि हमारी धरती काफ़ी प्रदूषित हो गई है कार्बन से और फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल मतलब जो भी पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट से हमारे एनर्जी या जो जला के हम लोग करते हैं उससे हम लोग का प्रदूषण और पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। इससे बचने के लिए हम लोग ये क्लीन एनर्जी, इसको नाम देते हैं क्लीन एनर्जी, मतलब ये प्रदूषण नहीं फैलाती है या उस लेवल का प्रदूषण नहीं फैलाती है जितना फॉसिल फ्यूल फैलाती है। इसीलिए आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज से हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमारा एनवायरमेंट काफ़ी डिग्रेडेशन की ओर बढ़ रहा है।
2: जी, अगर हम बात सौर ऊर्जा की करें तो ये हमारे भारत देश के लिए ये इतना सही क्यों है?
3: ये हम लोग का काफ़ी अच्छा लक है कि हम लोग जिस जगह लोकेटेड हैं ग्लोब में, हमारे पूरे धरती में जिस जगह में भारत है, उस जगह में सूर्य का बहुत अच्छा प्रकोप है। हम लोग को काफ़ी सारे दिनों में लगभग 365 दिन में से एवरेज में भारत को लगभग 300-310 दिन सूर्य ऊर्जा मिलती है। इसकी वजह से यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा रहता है कंपेयर टू थोड़ा नॉर्थ में अगर जाते हैं तो वहाँ पर सौर ऊर्जा कम होती है। और क्योंकि हम लोग इक्वेटर के पास हैं तो हमारा डायरेक्शन ऑफ सन भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं।
2: और नलिन जी, जैसा कि आप पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं, तो फिर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में आप क्या सहभागिता निभाते हैं या फिर लोगों को जागरूक करने की कोशिश अवश्य करते हैं?
3: इसमें विवेक जी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि हमारी सारी बिल्डिंग्स में सौर ऊर्जा को लगाने के लिए जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बिल्डिंग को चाहिए होती है वो मैं पहले से ही प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आप जब लगाना चाहें आप लगा सकते हैं और आपका भवन या आपके इंडस्ट्री या आपका शेड या कोई भी टाइप का जो बिल्ट स्ट्रक्चर है वो उस लोड को लेने लायक रहे। ये मैं अपनी सारी बिल्डिंग्स में इसका ध्यान रखता हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि हम अपने जितने क्लाइंट्स हैं उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सौर ऊर्जा के लिए आपको एक बार खर्च जरूर है, बट इसका फ़ायदा आपको लगभग 25 साल तक मिलता है, जिसमें कि लगभग 3-3.5 साल में आपका जो पैसा है वो वापस आ जाता है, और उसके बाद लगभग 21 साल तक फ्री में बिजली आपको मिलती है। तो ये खर्चा आपके लिए लगभग कुछ नहीं है अगर आप 25 साल तक इस चीज को देखें। और इसमें अब काफी सारी रियायतें भी हैं, गवर्नमेंट भी रियायत दे रही है, बैंक्स भी रियायतें दे रही हैं, लोन आप ले सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडीज है। सब्सिडीज की अगर बात करें तो ये रूफटॉप रेजिडेंशियल में सिर्फ सब्सिडीज हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 किलोवाट का 78,000 रुपए 78,000 रुपीज फॉर 3 किलोवाट तक का आपको सब्सिडी मिलती है। उसके बाद भी अगर उससे ऊपर भी आप लगाना चाहें तभी भी सिर्फ 78,000 ही मिलती है, बट सब्सिडी मिलती है और ये काफी लाभदायक है क्योंकि अगर 3 किलोवाट का आप अगर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ये आपको लगभग 1,80,000 से लेके 2,40,000 तक का खर्चा होता है, जिसमें कि लगभग 80,000 रुपए आपको वापस मिल जाते हैं। तो लगभग एक तिहाई खर्चा जो है वो तो गवर्नमेंट ही ले रही है, और आपको अगर 3 साल में बिजली फ्री हो जा रही है तो इससे बेटर क्या हो सकता है। ये एक बार जब मैं क्लाइंट्स को समझाता हूँ तो वो काफी इंटरेस्टेड हो जाते हैं और लगाने की

0: कोशिश करते हैं। अभी तक मैंने पिछले 5 साल में, विवेक जी, नहीं होगा तो कम से कम 2 मेगावाट तक का सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन अपने भवनों में कर चुका हूँ।
1: नलिन जी, जैसा कि आपने बातें की कि सौर ऊर्जा हमारे लिए काफी जरूरी है, अक्सर हम बचपन से भी एक चीज को सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों से कि धूप में बैठो, विटामिन डी मिलता है, शरीर के लिए भी आवश्यक है, और चूंकि पर्यावरण को देखते हुए सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी आवश्यक होते जा रहा है, तो धूप में बैठने के अलावा भी एक आम इंसान सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे शुरू कर सकता है?
0: सौर ऊर्जा का मेडिकल पर्पस तो रहता ही है, जैसा आपने बताया विटामिन डी। प्लांट्स को सौर ऊर्जा के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस के बिना ऑक्सीजन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो सौर के बिना तो हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है
1: जी।
0: और हमारा जो धरती है, जिस पोजीशन में है सन से, तीसरा प्लैनेट, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, थर्ड रॉक फ्रॉम द सन इंग्लिश में बोला जाता है, ये इसकी पोजीशन ऐसी है कि उसकी हीट उतनी है जितना ह्यूमन और लाइफ उसको सस्टेन करे, और इतना पास भी नहीं है कि जल जाए और इतना दूर भी नहीं है कि हम लोग ठिठुर के मर जाएं। तो अर्थ बहुत ही ऑप्टिमम लोकेशन पे है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, पहली चीज। दूसरा, विटामिन डी आपने बोला, प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस बोला, अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेशन सूर्य ऊर्जा से हो ही रहा है, माने पूरी की पूरी जो लाइफ है, लाइफ विदाउट द सन इज नॉट पॉसिबल
1: जी। और जैसा कि नलिन जी आपने कहा कि अगर हम सोलर प्लेट अपने घरों में लगवाएंगे तो हमारे लिए काफी सहूलियत वाला होगा, फिर भी कई लोगों को लगता है कि सोलर प्लेट लगवाना काफी महंगा पड़ता है, तो ऐसे लोगों को या फिर हमारे सुनने वालों को आप चलते चलते अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: इसमें मैं, विवेक जी, बहुत इम्पोर्टेंट 2-3 बातें बताना चाहूंगा। इसमें पहली बात यह है कि 1 किलोवाट जब आप 1 घंटा यूज करते हो तो वो 1 यूनिट माना जाता है। हम लोग सब यूनिट से, हम लोग को काफी जानकारी है, हम लोग वाकिफ हैं कि 1 यूनिट क्या होता है, और हम लोग यूनिट बिजली का पैसा देते हैं जो कि लगभग 6-6.25 रुपए यूनिट हमारी बिजली है। तो 1 किलोवाट सोलर लगाने का कॉस्ट जो पहले 70-80 हजार रुपए हुआ करता था, वो आज घट के आपका लगभग 40-45-50 हजार रुपए किलोवाट हो गया है। तो हमारा काफी, इंडिया ने इसमें प्रोग्रेस किया है और हमारी गवर्नमेंट ने उसको बहुत प्रमोट किया है, जिसकी वजह से रेट्स हमारे काफी कम हो गए हैं। तो 1 किलोवाट अगर आप लगाते हो तो आपको लगभग 40-50 हजार रुपए खर्च होता है, जो कि आप 3 साल में वापस ले सकते हो, इस हिसाब से कि ये लगभग 4-4.5 यूनिट एक दिन में जनरेट करती है पावर 1 किलोवाट। तो उसका आप अनुमान लगाएंगे तो आप निकाल सकते हैं कि अगर आपका, मान के चलिए, आपका 120 यूनिट आपका महीना का खर्चा है, तो 4 यूनिट अगर आपका एक दिन में लग रहा है तो 30 आपका यूनिट 1 किलोवाट का होने से आपका वो फुलफिल हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आपको लगभग 3-3.5 साल में आपको आपका पैसा वापस आ जाएगा। ये कैलकुलेशन इसमें, ये तो है बिना किसी सब्सिडी के। इसमें अगर आप 80 हजार रुपए 3 किलोवाट का, लगभग 75-80 हुआ तो लगभग 25-28 हजार रुपए किलोवाट आपको उसमें पैसा वापस भी मिल जाता है। तो लगभग आधे दाम में आप उसको लगा सकते हो। इससे बहुत बड़ा आपको एडवांटेज मिलता है क्योंकि 3 साल बाद आपको बिजली का खर्चा है ही नहीं। इसमें एक नेट मीटरिंग लगता है। नेट मीटर ऐसा होता है कि जो आप सौर ऊर्जा से जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, आप पहले वो यूज करते हो और उसका जो एक्स्ट्रा होता है वो ग्रिड को चला जाता है। इस सिस्टम को ऑन ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है जहां पर बैटरी लगती है और आपकी पावर जो है वो बैटरी में लग के, जैसे आप लोग इन्वर्टर लगाते हैं उस टाइप से, इन्वर्टर से आपको पावर मिलता है। और तीसरा हाइब्रिड होता है जिसमें कि ऑन ग्रिड, माने आप पावर जितना आप बिजली बना रहे हैं वो ग्रिड में भी चला जाता है और कुछ बैटरी में भी सेव हो जाता है। ये 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। सबका दाम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ऑन ग्रिड सबसे सस्ता होता है क्योंकि उसमें बैटरी नहीं लगती है। ऑफ ग्रिड होता है जिसमें बैटरी लगती है, और हाइब्रिड में इन्वर्टर थोड़ा महंगा होता है क्योंकि उसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों काम में आता है। तो ये सिस्टम आपको डिसाइड करना होगा डिपेंडिंग ऑन आपके बिजली कितने दिन आपके पास रहती है और कितनी देर नहीं रहती है। अगर आपके पास बिजली बहुत देर नहीं रहती है तो आपको या तो हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड में जाना चाहिए, बट अगर बिजली आपके यहाँ काफी समय रहती है तो ऑन ग्रिड में जाइए। इसका रीजन ये है कि ऑन ग्रिड जब रहता है तो अगर बिजली गई तो आप सौर ऊर्जा से भी बिजली आपकी नहीं चलेगी, वो आपको लोड शेडिंग ही रहेगा, बट ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड में आपको फिर भी बिजली मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो और आपके पास कितने घंटे नॉर्मल बिजली रहती है, इस पे आप डिसाइड कर सकते हो।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी दी नलिन जी आपने सौर ऊर्जा के बारे में और सोलर प्लेट के बारे में। जो भी श्रोता सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को, अपने घरों में सोलर प्लेट का प्रयोग करके वो बिजली भी बचा सकते हैं और प्रदूषण दूर करने में अपनी सहभागिता भी निभा सकते हैं। नलिन जी, इस अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कैसे हम

0: सुनिए,
1: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
0: जरा सुनिए,
2: घरों की छतों में सोलर प्लेट्स लगाने के फायदे, इसी विषय पर आप सुन रहे थे नलिन गोयल की भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे विवेक आदित्य। इसी के साथ जरा सुनिए कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। लोकगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए शारदा सिन्हा की आवाज में भोजपुरी में गीत।

शारदा सिन्हा की आवाज में आप सुन रहे थे भोजपुरी में गीत। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। कार्यक्रम में ये सुनते हैं नजरुल गीती। कलाकार हैं मानवेंद्र मुखर्जी।

मानवेंद्र मुखर्जी की आवाज में आप सुन रहे थे नजरूल गीति। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर DS वर्मा की भेंट वार्ता, पेट से जुड़ी आम समस्या। इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, अक्सर लोगों को पेट से संबंधित कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेट से जुड़ी आम समस्याओं की बातें हम करेंगे आज के स्वास्थ्य चर्चा में। इस बारे में बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर डीएस वर्मा। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोगों को पेट से जुड़ी कौन कौन सी समस्या होती है?
1: वैसे तो पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ आम समस्याओं के बारे में चर्चा की जाए। सबसे बड़ी आम समस्या पेट की है कब्ज। वैसे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं कही जाती है, छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रायः लोग इससे सफ़र करते हुए दिखते हैं और इस कब्ज की वजह से और बहुत तरह की समस्याएं लोगों में आम हो जाती हैं। इसके अलावा एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, ये कुछ आम समस्याएं हैं पेट से रिलेटेड। इनसे बचने के लिए हम लोग अगर देखें तो बिना मेडिसिन के, बिना दवाओं के भी इन समस्याओं से हम लोग बच सकते हैं। अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव अगर ले आएं तो आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। सबसे पहली जो समस्या है, प्रायः जो देखी जाती है कि व्यायाम की कमी, ज़्यादातर लोगों में व्यायाम की कमी होती है। पानी कम लेना चाहते हैं, पानी कम पीते हैं, खाने में

0: शेड्यूल है खाने का वो सही नहीं रहता है। अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम नियंत्रित कर लें तो हम समझते हैं कि 50% जो पेट की समस्याएं हैं वो अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं।
1: आपने कब्ज की बात की, तो कब्ज होने का मुख्य कारण क्या होता है?
0: कब्ज का मुख्य कारण हमारा जो शरीर है उसमें व्यायाम की कमी, उसकी वजह से जो हमारे आंत का जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से जो बाउल मूवमेंट जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं होता है, उसकी वजह से एक आम समस्या हो जाती है। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है जो लोगों में पाई जाती है कि पानी का इंटेक कम करना।
1: अच्छा, लोग कम पानी पीते
0: हैं। कम पानी पीते हैं और कई बार लोगों को प्यास ही कम लगती है, कई बार लोग अपने काम में इतनी व्यस्त रहते हैं कि वो पानी का प्रॉपर सेवन नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक बार खा के और फिर वो कई घंटे कुछ नहीं खाते हैं, बिना खाए हुए रह जाते हैं, और एक बार में जो खाते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, और उसके बाद काफ़ी लंबा गैप हो जाता है दूसरे जो खाने का। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है।
1: कहने का मतलब आपका है कि थोड़ा थोड़ा खाना खाएं और अंतराल को कम करें।
0: जी हाँ, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं और कम इंटरवल में खाते रहें। साथ में खाने जो आपका जो भोजन है उसमें फाइबर की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। फाइबर जनरली हम लोग हरी सब्जियां और सलाद इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, इन चीज़ों का समावेश आपके खाने में होना चाहिए।
1: और इनडाइजेशन किन कारणों से ज़्यादा होता है?
0: देखिए, इनडाइजेशन का भी एक कारण यही है, खान पीन की हैबिट, फूड बैड फूड हैबिट जिसको हम लोग बोलते हैं, और साथ ही साथ आपके खाने का जो शेड्यूल है उसको मेंटेन नहीं करना, प्लस खाने में कुछ ऐसी चीज़ें खाना जो आपके जो पाचन क्रिया है उसको जो डिस्टर्ब करता हो, खासकर तेल मसाला, फास्ट फूड और बाहर के जो आइटम है वो कम खाया जाए अगर, तो इनडाइजेशन को भी कंट्रोल में किया जा सकता है।
1: तो पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, या फिर अगर मान लीजिए कोई नज़रअंदाज करता हो, नहीं देखता हो इसे, तो आगे चल के किस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है?
0: देखिए, ये छोटी छोटी समस्याएं कभी कभी बहुत गंभीर रूप ले लेती हैं। ये समस्याएं होते होते लीवर से रिलेटेड बहुत तरह के प्रॉब्लम्स, पैंक्रियाज, लीवर से रिलेटेड, आंत से रिलेटेड बहुत तरह की परेशानियां हो सकती हैं। कई बार इसमें इंसान को बहुत का जो है खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, और तो मैं यही कहूँगा कि इन छोटी छोटी समस्याओं को अगर नियंत्रित रखा जाए तो आप बहुत बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, डॉक्टर वर्मा ने जैसा बताया उनकी बातों पर यदि आप अमल करेंगे तो बहुत हद तक पेट से जुड़ी आम समस्याओं से आप बचे रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बधाई।

पेट से जुड़ी आम समस्या, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी एस वर्मा की भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात, और फिर 8:15 से मॉर्निंग न्यूज़, 8:30 से हम आपको आकाशवाणी के रांची केंद्र लिए चलेंगे जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए

0: दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
4: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने

0: रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
1: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
2: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
3: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317 1 0112317 1 0 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य।

0: जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नवभारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेलगांव में 1042 नवचयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज करेंगे समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ। 3 साल तक के बच्चों को घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व मंत्री वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र को पूछताछ के लिए जारी किया समन। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश आंधी और वज्रपात की जताई संभावना। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड से 4 खिलाड़ियों का चयन। 5 से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में टीम खेलेगी 7 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नवचयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवी कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। राज्य सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की चरणबद्ध नियुक्ति कर रही है, जिसके तहत अब तक 12,500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने युवाओं से नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कल से शुरू हो जाएगा। इस कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चतरा जिले में कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने पत्रकारों से बातचीत की।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार पूरे राज्य में

0: दौरा करके और सभी जिलों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है, ताकि किसी भी तरह से वोटर का नाम उस लिस्ट से नहीं कटे जो पात्र है, जो पात्रता रखता है, या जो 18 वर्ष जिसका आयु हो गया है उस आदमी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े।
1: रांची में महिला सशक्तिकरण को लेकर सामाजिक संस्था इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 325 की ओर से प्रत्युषा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित किया।
2: ये लोग लगातार सोशल वर्क करते हैं, स्कूल में जाके हैप्पी स्कूल बनाते हैं, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम रहता है उसको दूर करते हैं। और अभी यहाँ कुछ जैसे बुके वगैरह जो दिया गया वो बच्चों के द्वारा ही बना के दिया गया, महिलाओं के द्वारा बना के दिया गया, तो लगातार ये लोग फील्ड में काम कर रहे हैं।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब कारोबार और उससे जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र रोहित उरांव को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने रोहित उरांव को आज तथा रामेश्वर उरांव को कल यानी 30 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। यह कार्रवाई योगेंद्र तिवारी से जुड़े शराब कारोबार मामले की जांच के क्रम में की जा रही है, जिसमें ईडी पहले भी संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। रांची के पहाड़ी मंदिर से बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 82 श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु 3 जुलाई को अमरनाथ गुफा के लिए प्रस्थान करेंगे और 6 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। साथ ही वैष्णो देवी, रघुनाथ मंदिर, खीर भवानी और स्वर्ण मंदिर सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी दर्शन करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर स्थित एम्स ने पहली बार सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी कर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह जटिल सर्जरी कार्डियो थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉ. रजत अग्रवाल और एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के डॉ. संजय कुमार के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। रांची में कल 3 दिवसीय चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 का समापन हुआ। विस्तृत ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: रांची स्थित सरला बिरला यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 का कल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई शिक्षाविदों, फिल्मकारों और कलाकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के कलाकार राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को देश दुनिया तक पहुंचाकर राज्य की ब्रांडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सी. जगन्नाथ ने युवा फिल्मकारों से झारखंड की प्राकृतिक संपदा को फिल्मों के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने कहा कि सिनेमा समाज में रचनात्मक सोच विकसित करने का प्रभावी माध्यम है और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समारोह में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविष रहमान।
1: मॉनसून से पहले हजारीबाग नगर निगम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस सिलसिले में महापौर अरविंद कुमार राणा ने शहर के स्कूलों समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
4: मैं सारे निगम क्षेत्र के विद्यालयों का करने वाला हूँ विजिट। जहाँ भी आवास होगा हमारा विद्यालय को हम ठीक करेंगे। रोड और नली तो हमारा प्राथमिकता सूची में है। हम अभी 70 नलियों का रोडों का काम करवाने वाले हैं। टेंडर हो गया हमारा, ये हमारा विद्यालय के सामने अतिक्रमण कर लिया है और पक्का अतिक्रमण है।

मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। स्कूली खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI ने वर्ष 2025-26 के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। परिषद को राष्ट्रीय चयन ट्रायल एवं कोचिंग कैंप के सफल आयोजन के लिए सराहना पुरस्कार तथा 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के उत्कृष्ट आयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ आयोजक श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें से 3 रांची के बरियातू स्थित CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की छात्राएं हैं और चौथी खिलाड़ी सिमडेगा की है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर प्रमुख अखबारों ने पूर्व वित्त मंत्री सह कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को ईडी से मिले समन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, शराब घोटाले में पूछताछ के लिए रोहित को आज, रामेश्वर को कल बुलाया। प्रभात खबर की हेडलाइन है, खुद कार चलाकर जोन्हा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी संग उठाया प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद। दैनिक जागरण लिखता है, SIR कल से गणना प्रपत्र लेकर घर घर पहुंचेंगे BLO। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में 17 जिलों में कुपोषण की स्थिति गंभीर, 13 लाख महिलाओं बच्चों को 3 माह से पोषाहार बंद। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेल गांव में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा आज करेंगे समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ। 3 साल तक के बच्चों को घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र को पूछताछ के लिए जारी किया समन। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की जताई संभावना। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड से 4 खिलाड़ियों का चयन, 5 से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में टीम खेलेगी 7 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आपके साथ मैं हूँ सुनीता इस प्रसारण में।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम लोक रंग का, जिसमें आप सुनते हैं लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नागपुरी लोकगीत। कलाकार हैं बशीर अंसारी और साथी।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी देर में।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, हर साल 29 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया का ध्यान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की संभावनाओं और संकटों की ओर आकर्षित करता है। ये दिन ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी समस्याओं को चेताता है और इनके समाधान के हेतु समूहगत और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

बूंद जो बन गए मोती। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी मुकेश की। गाने के बोल लिखे भरत व्यास ने और धुन बनाई सतीश भाटिया ने। श्रोताओं, आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। भारत में ये दिवस हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे चित्रलेखा फिल्म का गीत। गाने के बोल लिखे साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई रोशन ने। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।

और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। दोनों नेताओं ने भारत के विजन महासागर, पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति साझा प्रतिबद्धता के तहत भारत मॉरिशस की मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। दोनों देशों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे और बातचीत आगे बढ़ सके। वेनेजुएला में बुधवार को आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्ज ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 3238 लोग घायल हुए हैं और 3142 परिवार इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। बचाव दल प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम और माहे में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिन तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना सुनेगा कुछ देर के बाद।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों ने सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुन्दर का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है।

0: कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरीबा, मालदीव्स और वानुआतू जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं।
1: हेलो मनभावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
4: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
5: नमस्कार जमशेदपुर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरंजना। सभी श्रोताओं को श्वेता का नमस्कार। कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं संगीतकार राम संपत के संगीतबद्ध दिल को छू लेने वाले गाने।

खाकी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी अर्नब चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल की, गाने की बोल लिखे समीर ने। श्रोताओं, संगीतकार के रूप में राम संपत का पहला एल्बम 1997 में लव ओलोजी था। ये उनका पहला सोलो एल्बम था। उन्होंने खाकी फैमिली, जंबो, आगे से राइट और लव का द एंड के लिए संगीत दिया। हालांकि उन्हें पहली बार लोकप्रियता डेली बेली से मिली। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उनकी अगली फिल्म आई तलाश। एक बार फिर राम संपत ने बेजोड़ गानों का संकलन किया। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गाना।

कार्यक्रम सुरंजना के तहत आज आप सुन रहे हैं संगीतकार राम संपत के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। कार्यक्रम में समय हो चला है अंतराल का, बने रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ।

0: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अंतराल हुआ पूरा, एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, फिल्म तलाश के बाद आई फुकरे, फुकरे फिल्म का एक पारंपरिक गाना अंबर सरिया के लिए राम संपत की बहुत तारीफ हुई। इस गाने को गाया उनकी पत्नी और गायिका सोना महापात्रा ने। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गाना।

मुन्ना धीमन का लिखा हुआ गाना आप सुन रहे थे, आवाज थी सोना महापात्रा की, फिल्म थी फुकरे। श्रोताओं, राम संपत की संगीत शैली रॉक, पॉप, लोक संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत का अनोखा मिश्रण मानी जाती है, जिसकी वजह से वे बॉलीवुड के सबसे प्रयोगधर्मी संगीतकारों में गिने जाते हैं। कार्यक्रम सुरंजना में आप सुन रहे थे संगीतकार राम संपत के संगीतबद्ध के कुछ प्यारे से गाने। अब कार्यक्रम से श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन। राग है शिवमत भैरव।

आप सुन रहे थे पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन, राग था शिवमत भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार बुलेटिन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षत विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का

0: that the death toll from the two powerful earthquakes that struck Venezuela Wednesday has risen to 1,450 after the two powerful magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes. Venezuela has recorded 430 light to moderate aftershocks, Rodriguez said in the latest government update on the national emergency. Earlier on Saturday, he said on state television that 3,238 people have been injured and 3,142 families affected by the disaster. Indian stock markets opened flat today, with investors and traders closely monitoring developments surrounding the US-Iran ceasefire and upcoming diplomatic discussions. Nifty opened at 24,062, up 6 points, while Sensex started marginally lower at 77,055, down 45 points in the early trade today. Meanwhile, the international benchmark Brent crude rose 1% to $72.78 per barrel, while US West Texas Intermediate crude gained more than 2% to nearly $71 per barrel. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eshtukuyo of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-host Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July 4th. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल खतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 1,450 हुई और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला

0: मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। श्री गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहुंचे। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, और खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा ले रहे हैं।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वेनेजुएला में बुधवार को दो जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिग्स ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए।
5: इस आपदा में 3238 लोग घायल हुए हैं और 3142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अभी भी दिन रात खोज और बचाव कार्य में लगे हैं। अधिकारी राहत कार्यों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बचाव दल तटीय और पहाड़ी इलाकों में प्रभावित समुदाय तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस बीच वेनेजुएला फाउंडेशन फॉर सिस्मोलॉजिकल रिसर्च ने बताया कि शनिवार को देश के मध्य क्षेत्र में 4.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिससे इस हफ्ते की शुरुआत में आए दो विनाशकारी भूकंप के कारण पहले से ही डरी सहमी आबादी और अधिक परेशान हो गई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इस मैच में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर

170 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए एलिस पेरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को एक रन से हरा दिया। बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। भारतीय पुरुष टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। आयरलैंड के जय मंदुड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। आयरलैंड ने दो मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। आयरलैंड ने पहला मैच 34 रन से जीता था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 1450 हुई। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं जरा हटके जरा बचके इस फिल्म का गाना। आवाज है अरिजीत सिंह की, गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य।

और अब आइए सुनते हैं टशन फिल्म का गाना। आवाजें हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की, रचना है कौसर मुनीर की और तर्ज बनाई विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, इस समय आप है आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ और आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। समय हो चला है अंतराल का।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870001424242।
4: ओ 870001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870001424242 पर।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। अब आइए सुनते हैं सत्या फिल्म का गाना। आवाजें हैं आशा भोसले और सुरेश वाडकर की। गाने के बोल लिखे हैं गुलजार ने और तर्ज बनाई विशाल भारद्वाज ने।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गाना। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीतकार शांतनु मोइत्रा।

अब आइए सुनते हैं देवदास फिल्म का गाना। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की। गाने की बोल लिखे नुसरत बद्र ने और धुन बनाई स्माइल दरबार ने।

और प्यार हो गया इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। गाने की बोली थी जावेद अख्तर ने और धुन बनाई नुसरत फतेह अली खान ने। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को दो जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। इस आपदा में 3238 लोग घायल हुए हैं और 3142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अब भी दिन रात खोज और बचाव कार्यों में लगे हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हुए हैं अभी। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

Hollywood. नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। और कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, गीत संगीत विविध जानकारियों दिन विशेष की बातचीत के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

श्रोताओं, स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न द्वारा निर्मित विशाल मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा के दारु विग्रह यानी लकड़ी की मूर्तियों का प्राकट्य हुआ और उन्हें पहली बार स्थापित किया गया था, इसलिए ये दिन भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व संत कबीर के जन्मतिथि के कारण भी उल्लेखनीय है। कबीर समाज में सूर्य की तीव्र प्रकाश की तरह कवि और समाज सुधारक के रूप में अवतरित हुए। वे मनुष्य के चरित्र को गढ़ने वाले एक अनूठे शिल्पकार थे। भक्तिकाल के इस महान संत ने समाज की विसंगतियों पर अपनी रचनाओं द्वारा सीधे प्रहार किया। अपने समय की चुनौतियों से सीधे टकराने वाले कबीर जब लिखते हैं, चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए, तो यहाँ उनकी चक्की बाह्य जगत और अंतर जगत के दो पाटों यानी कथनी और करनी के बीच फंसे मनुष्य की स्थिति को दर्शाती है। एक अभिभावक और शिक्षक किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देते समय डांटते भी हैं और कभी कभी शारीरिक दंड भी देते हैं। ये डांटना और प्रताड़ना छेनी हथौड़े से पत्थर को गढ़कर मूर्ति बनाने की प्रक्रिया जैसी ही है। कबीर को जिस ब्रह्मानंद की अनुभूति आंतरिक जगत में होती है, वहां उन्हें प्रेम, करुणा, स्नेह, अपनत्व, लालित्य का अमूल्य रत्न दिखाई पड़ता है। यही माँ के गर्भ में शिशु को प्राकृतिक रूप से मिलता रहता है। जब बच्चा भी जन्म लेता है और संसार में आता है, तब रो पड़ता है। कबीर भी चलती चक्की देखकर इसीलिए रो पड़ते हैं क्योंकि जिंदगी की चादर को ओढ़कर उस पर स्वार्थ का दाग मनुष्य लगा देता है, जबकि वे दास कबीर जतन से ओढ़ी जस की तस धर दीनी चदरिया के माध्यम से ये बताते हैं कि माँ के गर्भ में मिली चादर की कीमत जो समझेगा, उसे जिंदगी की चादर मैली उसके जिंदगी की चादर मैली नहीं हो सकती कभी। इस तरह कबीर कथनी और करनी के द्वंद्वात्मक पाटन में फंसे मनुष्य को साबुत बचाने का उपक्रम करते हैं। चक्की तो अनाज को पीसती है, लेकिन कबीर की चक्की मनुष्य को पशुता से बचाकर देवत्व की ओर ले जाती है।

धावा करता धरन धरन धरत पाग परत नहीं परन धर धन के धन नन नन नन नादर दीन तनु नन नन।

दिल ही तो है। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में। संगीतबद्ध किया था रोशन ने और गीत रचना थी साहिल लुधियानवी की।

श्रोताओं, सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद रोजाना की जिंदगी में और योजना विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का उद्देश्य छात्रों और नागरिकों को राष्ट्रीय विकास, आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने और वैज्ञानिक नियोजन में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में जागरूक करना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अमूल्य योगदान को मान्यता देने और शासन, अनुसंधान और विकास में सांख्यिकी विधियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सांख्यिकी आर्थिक नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और अवसंरचना विकास के लिए आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों और सांख्यिकी सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रमुख योगदानों की अगर हम बात करें तो सांख्यिकी में महालनोबिस ने दूरी का परिचय कराया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक रहे आप, भारत में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों के अग्रणी रहे आप, सांख्यिकी नियोजन के माध्यम से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में योगदान भी दिया आपने। भारत सरकार ने प्रोफेसर महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2007 में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया। तब से ये दिवस प्रतिवर्ष देश भर के मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष वर्तमान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से संबंधित एक विशिष्ट विषय का चयन चर्चाओं और कार्यक्रमों के मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता का दोहन यानी हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा है। ये थीम साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और सुशासन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है।

दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का महत्व बहुत गहरा है। ये हमें डेटा और सूचनाओं को समझने, सही फैसले लेने और भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है। जैसे तापमान, बारिश और हवा की गति के अनुमान सांख्यिकी मॉडलों पर आधारित होते हैं, जो आपकी दैनिक गतिविधियों जैसे कपड़े सुखाना या यात्रा की योजना बनाने जैसी जो चीज़ें हैं उनको प्रभावित करते हैं। मासिक आय, खर्च, बचत और निवेश का हिसाब किताब रखने के लिए आप एवरेज और परसेंटेज जैसे सांख्यिकी

तरीकों का उपयोग करते हैं। आपकी स्मार्टवॉच द्वारा मापा गया कदमों का औसत, कैलोरी बर्न, हार्ट रेट, ये सब सांख्यिकी के आंकड़े हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं। गूगल मैप्स जैसी सेवाएं पिछले ट्रैफिक डेटा का विश्लेषण करके आपको सबसे तेज और जाम मुक्त रास्ता बताती हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन या यूट्यूब पर आपकी पसंद के आधार पर जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो आपकी पिछली गतिविधियों के सांख्यिकीय विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस पर निर्भर करते हैं। आप सबों को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों और विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के दूरगामी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 14 जून 2016 को एक प्रस्ताव पारित करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की द्वारा 29 जून 2014 को स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट के शुभारंभ की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस दिन को घोषित किया गया था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता, सांस्कृतिक संपदा और उनके सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 29 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस पर आइए हम सब प्रण लें कि हम अपने पर्यावरण की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सुरक्षा करेंगे। और आइए अब सुनते हैं ये एक प्यारा सा गाना।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, हसरत जयपुरी की शब्द रचना भी आप सुन रहे थे हमराही फिल्म से। और श्रोताओं नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद वापस आएंगे गीत संगीत के सिलसिले और थोड़ी बातचीत के साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। दोस्तों, बंगाल और बंगाली साहित्य के इतिहास में भरत चंद्र राय गुणाकार के बाद शायद माइकल मधुसूदन दत्ता ही एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने बंगाली कविता को एक नए आयाम की ओर मोड़ा। वो परिवर्तन के सच्चे समर्थक थे और उन्होंने पारंपरिक साहित्यिक व्यवस्था को करारा प्रहार दिया। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उतने ही प्रयोगात्मक थे जितने अपने रचनात्मक कार्यों में। शायद वे अपने विशाल व्यक्तित्व के विचार में दृढ़ विश्वास रखते थे, क्योंकि वे दिवालिया थे। बचत और व्यय के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने कभी ये समझने की कोशिश भी नहीं की कि जीवन के लिए सामाजिक मान्यता कितनी महत्वपूर्ण है। निस्संदेह उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि जीवन में असंतुलन ही उन्हें सबसे अधिक भाता था। मधुसूदन दत्ता का जन्म 25 जनवरी 1824 को अविभाजित बंगाल के जैसूर जिले के सागरदारी गांव में हुआ था। उनके पिता राजनारायण दत्ता एक वकील थे और माता जानवी देवी गृहिणी थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। बाद में जब उनके पिता कोलकाता खिदिरपुर चले गए तो बड़े हो चुके मधुसूदन ने हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने वहां बंगाली, फारसी और संस्कृत सहित दूसरे विषयों का अध्ययन किया। हालांकि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि बनने की उनकी प्रबल इच्छा हमेशा से उनके मन में बनी रही। वो एक कवि के रूप में अंग्रेजी साहित्य में शिखर पर पहुंचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 9 फरवरी 1843 को हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। इस धर्मांतरण ने उन्हें समाज में एक विद्रोही व्यक्ति बना दिया। उनका नाम बदलकर माइकल मधुसूदन दत्ता हो गया और उन्होंने बिशप कॉलेज में दाखिला लिया, क्योंकि उन्हें अपना पिछला कॉलेज छोड़ना पड़ा था। उनके परिवार को उनके इस धर्मांतरण से बहुत निराशा हुई, इसलिए मधुसूदन को पहले मिलने वाली आर्थिक सहायता तुरंत बंद कर दी गई। परिणामस्वरूप उन्होंने कोलकाता छोड़ने का फैसला किया और मद्रास के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने पहले मद्रास मेल ऑर्फन असाइलम स्कूल और फिर

मद्रास यूनिवर्सिटी हाई स्कूल में पढ़ाकर अपना जीवन यापन किया। मद्रास में उन्होंने लेखन कार्य जारी रखा और टिमोथी पेन पोएम उपनाम से द कैप्टिव लेडी और विजन्स ऑफ द पास्ट नामक दो अंग्रेजी कविता संग्रह लिखे।

माइकल मधुसूदन दत्ता की पहली शादी रेबेका मैक्टिविस्ट से और दूसरी शादी हेनरीटा वाइट से हुई। 1858 में जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तो वे कोलकाता लौट आए। यहीं से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया और उन्होंने अपना पूरा ध्यान बंगाली लेखन पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि बंगाली में अच्छे नाटकों की भारी कमी है, इसलिए जब वे बेलगाछिया थिएटर से जुड़े तो उन्होंने पश्चिमी शैली का पहला मौलिक बंगाली नाटक शर्मिष्ठा लिखा। आगे चलकर 1861 में मधुसूदन दत्ता ने बंगाली साहित्य के सागर में मेघनाथ वध काव्य जैसी अद्भुत रचना प्रस्तुत की। हालांकि बंगाली साहित्य में उन्हें हमेशा उनकी अमृताक्षर छंद के लिए याद किया जाएगा। वो इस क्षेत्र में एक समर्थक प्रचारक थे और उन्होंने अपनी बेमिसाल प्रतिभा से इसे समृद्ध बनाया। 1873 में उनके जीवन के अंतिम दिन घोर गरीबी, भीषण विपत्ति और तीव्र पीड़ा से भरे हुए थे। धन और उपचार के अभाव में कलकत्ता जनरल अस्पताल में उन्होंने अपने विशिष्ट अप्रत्याशित तरीके से बंगाल माता की गोद से विदाई दी। तारीख थी 29 जून की। साहित्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को आज हम उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत स्वदेश फिल्म से। आवाजें थी मधुश्री, विजय प्रकाश, आशुतोष ग्वारीकर की।

और श्रोताओं, जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान गत 28 से 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के 3,95,368 बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के लिए जिले में 3,054 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां 6,104 स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 29 और 30 जून को स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को खुराक देंगे। अभिभावकों से अपील है कि 0 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की 2 बूंद दवा जरूर पिलाएं। हर बच्चा हर बार के संकल्प के साथ किसी भी बच्चे को इस अभियान से वंचित नहीं रहने देना चाहिए। और श्रोताओं, आज के दिन विशेष की बात करें तो वर्ष 2007 में पहला आईफोन आधिकारिक तौर पर 29 जून 2007 को बिक्री के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि इस डिवाइस की पहली सार्वजनिक घोषणा इससे पहले 9 जनवरी 2007 को सैन फ्रांसिस्को में एक मैकवर्ल्ड इवेंट के दौरान एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स द्वारा किया गया था। 29 जून 1990 का CFC प्रतिबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत लंदन में किए गए संशोधन का हिस्सा था। इसके तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन और दूसरे रसायनों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह समाप्त करने पर सहमति बनी थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में होता था। ये वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन परत को नष्ट करते थे। मूल रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था, लेकिन ओजोन परत को हो रहे गंभीर नुकसान को देखते हुए 1990 में लंदन में सख्त कानून बनाए गए, जिसने वर्ष 2000 तक विकसित देशों में CFC उत्पादन को पूरी तरह से बंद करने का लक्ष्य रखा। बाद में विकासशील देशों जैसे भारत के लिए इसे 2010 तक का समय दिया गया। भारत ने 1992 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। हालांकि भारत ने 1 अगस्त 2008 को ही तय समय सीमा से 17 महीने पहले ही CFC के उत्पादन और उपयोग को पूरी तरह से बंद कर दिया था, कुछ दवाइयों में सीमित उपयोग को छोड़कर।

शैल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और सिनेमा से जुड़ा एक ऐसा नाम है दोस्तों, जिसने अपनी हास्य व्यंग की कविताओं से एक ओर जहां लोगों को खूब गुदगुदाया तो वहीं परिस्थितियों पर सोचने के लिए मजबूर भी किया। कवि के साथ ही एक अभिनेता के तौर पर भी उन्हें याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का खूब मनोरंजन भी किया। आज ही के दिन यानी 29 जून 1936 को महाराष्ट्र के अमरावती में शैल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। शैल चतुर्वेदी व्यंग्यकार, गीतकार और अभिनेता के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें 1970 और 80 के दशक में उनके राजनीतिक व्यंग्य के लिए भी पहचाना जाता था। शैल चतुर्वेदी पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, फिर वे कवि सम्मेलनों का हिस्सा बनने लगे और धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़े। एक अभिनेता के रूप में भी शैल जी का कोई जवाब नहीं था। उनकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है, चाहे श्रीमान श्रीमती में केशव के बॉस बबलू प्रसाद शर्मा का किरदार हो या फिर जवान संभाल के सीरियल में स्कूल इंस्पेक्टर का, जिसे देख पूरी क्लास शांत हो जाती और उनके जाते ही बच्चे उनका मजाक उड़ाते। कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर शैल चतुर्वेदी ने दर्शकों को खूब मनोरंजन किया। छोटे पर्दे पर लोगों को हंसने पर मजबूर करने वाले शैल चतुर्वेदी ने बड़े पर्दे पर भी दर्शकों को काफ़ी गुदगुदाया। वहीं कुछ संजीदा किरदार भी निभाए उन्होंने, उपहार, चमेली की शादी, हम दो हमारे दो, घर जमाई, पायल की झनकार, चितचोर, धनवान और तिरछी टोपी वाले जैसी कई फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया। भले ही एक अभिनेता के रूप में उन्होंने पहचान पाई हो, लेकिन उनकी असल पहचान एक कवि की थी। अपने हास्य रस से भरी कविताओं के जरिए वो लोगों के दिलों में उतर जाया करते थे। कवि सम्मेलनों में उन्हें सुनने के लिए भीड़ लग जाया करती थी। उनके चेहरे पर आने वाली प्यारी सी मुस्कान और हास्य व्यंग्य सुन लोग लोटपोट हो जाते थे। 29 अक्टूबर 2007 को जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो उनके चाहने वाले शोक में डूब गए। हास्य व्यंग्य के इस जादूगर ने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसके जरिए वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। आइए आज उनकी जयंती के अवसर पर सुनते हैं उन्हीं की अभिनीत फिल्म चितचोर का ये गाना।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार गौहर कानपुरी, आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने 1970 और 80 के दशक के हिंदी संगीत में अपने बेहतरीन बोल दिए। कानपुर में जन्मे गौहर कानपुरी को कम उम्र में ही शायरी और कविता लिखने का शौक हो गया था। मुंबई में लगभग 10 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद उन्हें 1967 में फिल्म प्यार की बाजी के गीत बड़े हंसी हैं सर को झुकाए बैठे हैं से पहला ब्रेक मिला। उन्होंने महान संगीतकार बप्पी लहरी के साथ सबसे ज़्यादा काम किया। इसके अलावा राम लक्ष्मण, जयदेव और नदीम श्रवण जैसे निर्देशकों ने भी उनके गीतों को संगीतबद्ध किया। उनके लिखे सदाबहार गीतों में फिल्म माशूक के लोकप्रिय गीत कौन हो तुम जो दिल में समाए जाते हो और ओ यारा कैसी तेरी बेवफाई शामिल हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और कुमार सानू जैसे दिग्गज गायकों ने उनके लिखे गानों को आवाज़ दी। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हुए

और इसी गाने के साथ नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। दीजिए श्रुति को इजाजत, नमस्कार।

0: आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रीक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर भावगीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। स्वीकार कीजिए स्नेह भरा नमस्कार और आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत स्वागत। तीव्र चंचल गतिशील पल पल बदलते मन के भावों पर केंद्रित है आज का हमारा कार्यक्रम भावगीत।

तुम्हारे बिना मैं अकेली पड़ी हूँ, जहाँ मैं जहाँ हूँ अकेली खड़ी हूँ। न मालूम है मुझको कहाँ अब ठौर ठिकाना, जिंदगी का सफ़र अब सफ़र में बिताना। कहाँ ठौर ऐसा जहाँ बैठ पाऊँ, कहाँ मीत ऐसा कि हाले दिल सुनाऊँ। प्रणय प्रीति मेरी कहाँ रे निलय में, मैं ढूंढूं कहाँ रे उसे इस प्रलय में। माया मत कहो, वो तो थी जीवन सुधा, बनी जो आज विरह वेदना मन की व्यथा। दर्पण क्या देखूं, मैं किसको निहारूं, वो जो मुझ में बसे था, वो जो मुझ में हंसे था, रूठा है मुझसे, मैं अब किसको संवारूं।

Rose. वो उस दिन की, उस पल की मेरी जो यादें बची हुई हैं, वो घनी भूत पीड़ाएं मन की पोथी में रची हुई है। कह दिया बहुत कुछ, फिर भी बहुत बची है मेरी अनकही कहानी। यादों के झुरमुट से वो बनता आँखों का पानी, जीवन के उस क्षण की सारी खट्टी मीठी बातें, अंबर पे सजी हुई हैं यादों की वही बारातें। कभी कभी रह जाती लहरों पर खींची रेखा, कुछ बातें ऐसी होती जो भूले नहीं भुलाए, कोई आंसू बनकर रोए, कोई शबनम बन मुस्काए।

जब भी बातें हों उसी की बातें हों, सपनों की सुनहरी गलियों में कुछ वादे हों इरादे हों, बस उसी की बातें हों। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है ना मन को, जब मन सराबोर हो प्रेम के रंग में, संदली खुशबू सांसों को महकाने लगती है, होंठ बिन बात मुस्कुराते हैं और आँखों में बहारें झूमने लगती है।

अजनबी मोड़ पर मिलने वाले अजनबी के बिछड़ने का गम ताउम्र साथ चलता है। बिछड़ने वाले हो परदेसी, हो सके तो किसी बहाने से लौटा। हुआ है तुमसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी पूरी।

और इसी गाने के साथ आज का भावगीत कार्यक्रम अब बस यहीं तक। जिन फिल्मों के गाने आज आपने इस कार्यक्रम में सुने वो फिल्में थीं राजनीति, नमस्ते लंदन, जमीन आसमान और अर्पण। आवाजें थीं इन गानों के लिए आदेश श्रीवास्तव, राहत फतेह अली खान और लता मंगेशकर की। संगीतकार थे आदेश श्रीवास्तव, हिमेश रेशमिया, आरडी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीतकार थे समीर अनजान, जावेद अख्तर और आनंद बख्शी। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है शास्त्रीय संगीत का, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 12:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने पंडित भजन सोपुरी का संतूर वादन राग पटदीप में।

0: राग पटदीप में पंडित भजन सोपुरी का संतूर वादन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। दिन का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की खामियां दूर करेगी राज्य सरकार। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा ऋण सीमा बढ़ाने पर भी होगा विचार। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। बीएलओ घर घर जाकर वितरित करेंगे गणना प्रपत्र। 29 जुलाई तक चलेगा अभियान। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा। 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए अब देने होंगे 4825 रुपए। और मानव हाथी संघर्ष के कारणों का अध्ययन करेगा आईआईएम अहमदाबाद। पायलट स्टडी के बाद राज्य भर के लिए तैयार होगी रणनीति। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। राज्य सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की चरणबद्ध नियुक्ति कर रही है, जिसके तहत अब तक 12,500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। राजधानी रांची में आयोजित समारोह में एक छात्रा द्वारा रीइंबर्समेंट और 15 लाख रुपए की ऋण सीमा का मुद्दा उठाए जाने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि योजना की कमियों को दूर किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर ऋण सीमा बढ़ाने पर भी विचार होगा। इधर कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज के दौर में प्रतिस्पर्धा अधिक बढ़ गई है, इसलिए सफलता के लिए खुद को आगे रखने की जरूरत है।
1: यही जनरेशन जो है वो आने वाले समय में हमारे समाज को, हमारे देश को आगे लेके जाने वाली है। इनको उस लायक भी बनना होगा, उस लायक बन सकते हैं ये लोग जहाँ ये लोग देश का नेतृत्व कर पाए सभी सेक्टर में। मुझे विश्वास है और भरोसा भी है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे ये।
0: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कल से होगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाताओं को केवल गणना प्रपत्र सही ढंग से भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को लौटाना होगा।
2: आने वाला इनमेशन फेस 30 जून से 29 जुलाई तक होंगे। कमीशन का इंस्ट्रक्शन पूरा स्टेट में, पूरा कंट्री में एक ही है, इसलिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसेस नहीं। आपका कहां तक डॉक्यूमेंटेशन का संबंध है, कमीशन का बहुत ही इंस्ट्रक्शन क्लियर है, इनमेशन फेस में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है।
0: शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी से समन मिलने के बाद राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। समन के अनुसार पूर्व मंत्री को आज अपने पुत्र रोहित उरांव के साथ एजेंसी के कार्यालय में पेश होना था। ईडी ने संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण कागजात के साथ दोनों को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना अब महंगा हो गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने नए बिजली कनेक्शन के लिए संशोधित शुल्क सूची जारी कर दी है, जो 1 मई से लागू है। नई दरों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 1 किलोवाट के घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को 4825 रुपए का भुगतान करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी

0: रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के कारणों का अध्ययन अब भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद करेगा। देश में पहली बार किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान ने इस विषय पर अध्ययन का प्रस्ताव दिया है। पहले चरण में गोला और गोमिया को पायलट अध्ययन के लिए चुना गया है और वन विभाग और IIM की टीम क्षेत्र का दौरा भी कर चुकी है। दोनों संस्थानों के बीच जल्द MOU होने और अध्ययन शुरू किए जाने की उम्मीद है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF वन्य प्राणी रवि रंजन ने बताया कि इस अध्ययन से मानव हाथी संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकेगा। धनबाद में जल्द ही 4 नए टाउन हॉल का निर्माण किया जाएगा। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिले की आबादी को ध्यान में रखते हुए नए टाउन हॉल की जरूरत महसूस की जा रही थी।
1: धनबाद में जो टाउन हॉल की कमी है, जिसमें 200 से ज्यादा जैसी संख्या हुई, तो कोई भी अच्छा हॉल, जिला परिषद का एक टाउन हॉल है, सर्किट हाउस का भी अपग्रेडेशन चालू कर दिया है। उसके सामने जो IB बंगलो है, उसके लिए भी राज्य सरकार ने 80 लाख रुपए आवंटित किए हैं, उसका भी रिनोवेशन चालू है, वो भी अपग्रेड हो जाएगा, तो वो भी हम लोग यूज करेंगे।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों के आकलन का जायजा लिया गया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला प्रशासन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार एक नई पहल की गई है। देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि पहली बार श्रावणी मेले के दौरान टोटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है।
2: सावन में भीड़ को देखते हुए हमने टोटो एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि भीड़ में ये टोटो एम्बुलेंस आसानी से चला जाए और वहाँ पे जो भी आवश्यकता होगी उनको वहाँ से लेके हम टेंडर निकाले हैं। कुछ दवाइयां भी रहेगी, अगर हल्का फुल्का होगा तो निकटवर्ती सेंटर में उनको ले जाएंगे, अगर विशेष दिक्कत होगी जिसमें हम लोग सदस्यता ला चुकेगा।
0: रांची के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां आज देव स्नान यात्रा के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे और इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिन के अनासर यानी एकांतवास में चले जाएंगे। 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सुबह 4 बजे पूजा आरती के बाद दोपहर 2:30 बजे विग्रहों को रथारूढ़ कर शाम 5 बजे रथ संचालन शुरू किया जाएगा। रथ शाम 6 बजे मौसीबाड़ी पहुंचेगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की खामियां दूर करेगी राज्य सरकार। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, ऋण सीमा बढ़ाने पर भी होगा विचार। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। BLO घर घर जाकर वितरित करेंगे गणना प्रपत्र। 29 जुलाई तक चलेगा अभियान। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा। 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए अब देने होंगे 4825 रुपए। और मानव हाथी संघर्ष के कारणों का अध्ययन करेगा IIM अहमदाबाद। पायलट स्टडी के बाद राज्यभर के लिए तैयार होगी रणनीति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण हो रहा था। अभी हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:20 हुए हैं। लेकर हाजिर है फिल्म संगीत का कार्यक्रम, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
5: जलवायु, उपभोग और उत्पादन, यह यूनेस्को का संदेश है। अत्यधिक उपभोग जलवायु संकट को और बढ़ा रहा है। आज की इकोनॉमी, खासकर अमीर देशों में, तेजी से उत्पादन और बेकार उपभोग का बढ़ावा देती है। इससे ज्यादा प्रदूषण होता है, संसाधन खत्म होते हैं और प्रकृति को तेज नुकसान पहुंचता है। इससे ठीक करने के लिए बड़े बदलाव और व्यक्तिगत कार्रवाई दोनों की सख्त जरूरत है। सरकारों को व्यवसायों पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा को समर्थन करना चाहिए। व्यक्ति, विशेषकर संपन्न लोग, कम खरीदकर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को चुनकर और ज्यादा से ज्यादा दोबारा इस्तेमाल करके अपने कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 2000 से 2017 के बीच प्रति व्यक्ति सामग्री उपभोग में 40% से ज्यादा वृद्धि हुई है।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद फिल्म संगीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, और कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और कार्यक्रम की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान और पलक मुच्छल की आवाज़ों में मिकी वायरस फिल्म का ये गाना। गीत और संगीत हानिफ शेख का है।

केके की आवाज़ में मर्डर 3 फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन था प्रीतम चक्रवर्ती का और शब्द रचना थी सईद कादरी की। आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में जिद फिल्म का ये गाना। शारिब तोशी का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है। गीत लिखा है शकील आजमी ने।

गैंगस्टर फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे केके की आवाज़ में। प्रीतम चक्रवर्ती का संगीत निर्देशन था और सईद कादरी का लिखा हुआ गीत। माफ कीजिएगा श्रोताओं, ये गाना हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए किन्हीं कारणों से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गाना।

1942 अ लव स्टोरी। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत था और संगीत बद किया था आर डी बर्मन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं पद्मावत फिल्म का गाना शिवम पाठक की आवाज़ में। ए एम तुरास की शब्द रचना है और संगीत संजय लीला भंसाली का।

पद्मावत फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे शिवम पाठक और साथियों के स्वरों में। ईएम तुराज की शब्द रचना थी और संगीत था संजय लीला भंसाली का। आइए अब आपको सुनवाते हैं टीटू एमबीए फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत पद किया है अर्जुना हरजाई ने और गीत लिखा है कुमार ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में सिटी लाइट फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीत जीत गांगुली का था, गीत लिखा था रश्मि सिंह ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, दिन का 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का

0: जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ।

0: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जल

0: प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर अवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं गीत संगीत का सिलसिला। जी हाँ, कार्यक्रम है फिल्म संगीत का, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं हम। हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों में एक बार फिर से गीत संगीत का सिलसिला यानी फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, और कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्रीति। नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और कार्यक्रम की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में, रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा हुआ गीत फिल्म तवायफ से।

आशा भोसले की आवाज़ में मजदूर फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने और गीत लिखा था हसन कमाल ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गाना, आशा भोसले और अनवर की आवाज़ों में फिल्म ये इश्क नहीं आसा से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: आपकी कसम, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये। दिन के 2:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
1: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडो स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी द्वेष भाव से दूर रहकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।
2: यहाँ पर 1000 से अधिक सहायक शिक्षकों की बहाली हो रही है, नियुक्ति पत्र आपको दिए जा रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि सरकार की प्रथम जिम्मेवारी हर विषयों पर हो, लेकिन उसके अंदर राज्य के नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरण को जन्मने ना दें, पनपने ना दें, जहाँ हम एक दूसरे को एक अलग अलग नजरों से देखें।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद जिले के भूली बस्ती स्थित मतदान केंद्र संख्या 38 उत्क्रमित मध्य विद्यालय तथा मतदान केंद्र संख्या 210 गुरु नानक मध्य विद्यालय पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किए जा रहे कार्य एवं कार्य योजना की समीक्षा की। वहीं दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन के साथ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिले के वेयर हाउस का निरीक्षण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि शिक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। CBSE ने कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के जिन छात्रों ने पहले ही दो विदेशी भाषाएं चुन ली है, उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दरवाजा आज से श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गया। मान्यता है कि पूर्णिमा के स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अस्वस्थ माने जाते हैं। बोकारो स्टील सिटी स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान को 108 कलश पवित्र जल से स्नान कराया गया। मंदिर के पुजारी लंबोदर उपाध्याय ने बताया कि इसके बाद वे करीब 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है।
3: दुनिया में जहां भी जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर ये कार्यक्रम रहता है। इसके बाद 15 दिन अभी उनका दर्शन साधन ग्रंथालय नहीं रहेगा। पंक्तियों के दर्शन के लिए अब मंदिर नहीं, वो आ जाएंगे भक्तजनों के पास। रथ यात्रा के दिन पहले नवयुग दर्शन होता है, यह शुभ माना जाता है।
1: सरायकेला खरसावां जिले में देवस्थान पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा लगभग 300 वर्ष से अधिक पुरानी धार्मिक परंपरा का निर्वहन श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ उनके अग्रज बलभद्र एवं बहन सुभद्रा को का पारंपरिक शाही स्नान संपन्न कराया गया। परंपरा के अनुसार नगर के 7 जलाशयों से एकत्रित पवित्र जल से भगवान का महाअभिषेक किया गया। हजारीबाग के मिशन अस्पताल के पास कल देर रात एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे मौजूद कई लोगों को अपनी चपेट में लेने के बाद बिजली के पोल और चापाकल में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुनुआ चक्रधरपुर मुख्य मार्ग पर आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक घंटे आधारित शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा निश्चितपुर स्कूल के पास हुआ, जहां सड़क पर जा रहे शिक्षिका को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है। मौसम। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद से ही हो रही बारिश से तापमान में कमी आई है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
1: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
0: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
1: जी।
0: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
1: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
1: जी।
0: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक

0: विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहाँ चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधना?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी?
2: आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं, ना लकड़ी की कमी ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूँ सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो
2: मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सर, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कल मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं
0: है?
1: कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: हाँ। नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
0: अब
1: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
3: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो।

0: ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो। मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और वो रोने लगा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: सोचा डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ। सोचा शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना।
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा, जा, सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।

0: कहना गरिया लूंगी मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी मैं तो साड़ी लूंगी।
1: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
1: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
1: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
1: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
1: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ हैं ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
1: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
1: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। हाँ, आगे चलकर देखते हैं।
2: ये देखो ये पेड़,
1: देख लो।
3: अम्मा अम्मा

0: वो देखो ओक का पेड़ और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे।
1: चलो इधर से निकल कर आओ।
0: अच्छा
2: आई
1: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
0: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
1: अरे दिखा तो।
0: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
3: ठीक है ठीक है, नहीं काटेंगे। हाँ।
0: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
3: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार। हाँ। ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: अरे नुकसान भी क्या है?
3: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
4: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो।
1: ये कौन सा पेड़ है? ना फूल ना फल।
3: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़े मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
3: हाँ।
0: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
3: हाँ बिल्कुल।
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा रहने दे इसको भी।
3: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
3: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। ले लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
3: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
1: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
3: और क्या।
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
3: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
1: अरे चुप।
3: क्या हुआ?
1: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
3: समझ गई ना?
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
3: बता?
1: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
3: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
1: फिर कैसे?
3: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
1: चल।
3: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
0: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
3: बोलना।
1: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
3: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा।

0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
1: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
2: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 MHz पर। दिन के 3:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सबसे पहले उस्ताद अमजद अली खान का उस्ताद अमजद अली खान की सरूद पर बजाई ये पहाड़ी धुन।

उस्ताद अमजद अली खान की सरोद पर बजाई पहाड़ी धुन अभी आप सुन रहे थे। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब आइए सुने पंडित शिव कुमार शर्मा की संतूर पर बजाई ये मिश्र खमाज धुन।

पंडित शिव कुमार शर्मा की संतूर पर बजाई ये मिश्र खमाज धुन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम है लोकगीतों का, सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के साथ आपका दोस्त संजीव हाजिर है। दोस्तों, आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं संताली लोकगीत। कलाकार हैं जोबा मुर्मू और उनके साथी। लीजिए सुनिए उनकी ये पहली प्रस्तुति।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना जोबा मुर्मू और उनके साथियों से कुछ संताली लोकगीत। श्रोता मित्रों, इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

झारखंड के लोकगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। शाम 4 बजे सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 4:02 पर। शाम 5 बजे सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। शाम के 4 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें पहली से पांचवी कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद जिले के भूली बस्ती स्थित मतदान केंद्र संख्या 38 उत्क्रमित मध्य विद्यालय तथा मतदान केंद्र संख्या 210 गुरु नानक मध्य विद्यालय पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किए जा रहे कार्य एवं कार्ययोजना की समीक्षा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि शिक्षा की कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। खूंटी अंचल सभागार में आज जन वितरण प्रणाली PDS के सभी डीलरों के साथ BSO खुशबू तिर्की ने बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक माह 1 से 20 तारीख के बीच शत प्रतिशत राशन वितरण हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राशन वितरण में अनियमितता करने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए एक हाईवा को जब्त किया। थाना प्रभारी अंजनी कुमार के अनुसार आज तड़के टोल ब्रिज के पास गश्त के दौरान हाईवा को पकड़ा गया, जिस पर क्षमता से अधिक बालू लदा था और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र में आज सवेरे हुए एक सड़क हादसे में घायल 23 वर्षीय शिक्षिका वंदना महतो की मौत हो गई है। विद्यालय जाते समय तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। प्राथमिक

एक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर किया गया था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के राज्य केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहली प्रस्तुति है फिल्म विवाह से। आवाजें हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। रविंद्र जैन का लिखा हुआ गीत है, संगीतबद्ध भी रविंद्र जैन ने किया है। आइए सुनते हैं।

श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाज़ों में भूल भुलैया फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। समीर का लिखा हुआ गीत था, संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। आइए आपको अगला गाना सुनवाते हैं अब केके की आवाज़ में, जिस्म टू फिल्म से। आरको प्रावो मुखर्जी का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है और गीत रचना है आरको प्रावो मुखर्जी और मुनीश मखीजा की।

उदित नारायण, सुनीता राव और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म गुप्त का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार वीजू शाह। ये दिल लगी, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में। बोल हैं समीर के, धुन बनाई है दिलीप सेन, समीर सेन ने।

अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में आपने सुना समीर का लिखा नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म थी दीवाना। फूल और कांटे इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। शब्द रचना है समीर की, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं अब आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में 30 जून से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू होगा। बूथ लेवल अधिकारी, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट, वॉलंटियर एवं बीएलओ सुपरवाइजर को पूरी पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न कराने का प्रशिक्षण दिया गया है। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए सभी मार्केटिंग अफसरों को 30 जून तक 100% खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी पात्र लाभुक राशन से वंचित नहीं रहे। बैठक के अंत में सहकारिता सप्ताह के तहत उपायुक्त ने अधिकारियों और कर्मियों को सहकारिता की शपथ दिलाई। गिरिडीह जिले में आज पुलिस ने एक कार्यक्रम आयोजित कर 211 लोगों को उनका मोबाइल वापस लौटा दिया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आपका मोबाइल फिर से आपका कार्यक्रम के तहत खोया हुआ मोबाइल पुलिस ने आम आदमी को वापस की है। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी 400 से अधिक मोबाइल आम आदमी को लौटाया गया है। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यह यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए राज्य के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:02 हुए हैं। दैनिक कार्यक्रम युववाणी थोड़ी ही देर में

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से युववाणी, और मैं हूं आपके साथ रेशमा। अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे उन कहानियों की जो आपके भीतर एक नया जज्बा भर देगी, उन जिम्मेदारियों की जो हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाएगी, और उस जगह की जो हमारे ज्ञान को रोशनी देती है। आज हमारे इस सफर में शामिल है मैरी कॉम के संघर्ष की कहानी, हरित भविष्य में युवाओं का योगदान और हमारे जीवन में लाइब्रेरी का महत्व। तो बने रहिए हमारे साथ।

दोस्तों, सफलता की चमक तो सबको दिखती है, लेकिन उस चमक के पीछे का अंधेरा और संघर्ष बहुत कम लोग देख पाते हैं। चलिए, आज आपको समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाकर ले चलती हूँ मणिपुर के एक छोटे से गांव चूरचांदपुर में। वहाँ खेतों में अपने माता पिता के साथ पसीना बहाती एक छोटी सी लड़की थी, मांगते चुंगनेजांग मैरी कॉम। घर में इतनी गरीबी थी कि दो वक्त का राशन भी मुश्किल से जुटता था। मैरी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए बहुत छोटी उम्र से ही उन पर घर और खेतों की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी जिद थी, जो खेतों की मिट्टी से दबने वाली नहीं थी। साल 1998 में मणिपुर के ही एक बॉक्सर डिंको सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। जब पूरे राज्य में उनका जश्न मनाया गया, तो उस छोटी सी लड़की के दिल में भी मुक्केबाजी का सपना जाग उठा। उसने तय कर लिया कि वह भी रिंग में उतरेगी, पर रास्ता आसान नहीं था। समाज और परिवार दोनों इस खेल के खिलाफ थे। पिता साफ कहते थे कि बॉक्सिंग लड़कियों का खेल नहीं है, इससे चेहरा खराब हो जाएगा, चोट लग जाएगी और फिर कोई शादी भी नहीं करेगा। लेकिन मैरी ने हार नहीं मानी। वह अपने पिता से छुपकर सुबह तड़के उठकर इम्फाल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने लगी। उनके पास बॉक्सिंग ग्लव्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह कटे फटे जूते और पुराने कपड़ों में बिना किसी आधुनिक संसाधनों के लड़कों के साथ अभ्यास करती थी। कई बार उनके पास बस का किराया भी नहीं होता था, तो वह मीलों पैदल चलकर ट्रेनिंग के लिए पहुंचती थी। यह सिलसिला 2 साल तक छुपा रहा, लेकिन कहते हैं ना कि हुनर और

मेहनत कभी छुपते नहीं है। साल 2000 में जब मैरी ने स्टेट चैंपियनशिप जीती और लोकल अखबार में उनकी फोटो छपी, तब जाकर उनके पिता को सच पता चला। पिता बहुत नाराज हुए, लेकिन मैरी के आंसू और उनके अटूट विश्वास को देखकर आखिरकार उन्हें झुकना ही पड़ा। इसके बाद मैरी कॉम ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीते, लेकिन जिंदगी उनकी एक और बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। साल 2005 में उनकी शादी ऑनलोर कॉम से हुई और फिर वह जुड़वा बच्चों की माँ बनी। पूरी दुनिया, खेल समीक्षक और यहाँ तक कि उनके करीबियों ने भी मान लिया था कि अब मैरी कॉम का करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है। सब कहने लगे कि माँ बनने के बाद एक महिला रिंग में मुक्के नहीं चला सकती, लेकिन सच्चा चैंपियन वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे जोरदार वापसी करे। बच्चों की देखभाल, घर की जिम्मेदारी और शरीर में आई कमजोरी, इन सब चुनौतियों में मैरी एक साथ लड़ी। जब बच्चों सो जाते थे तब मैरी रिंग में पसीना बहाती थी। उन्होंने दोगुनी मेहनत की और खुद को फिर से तैयार किया। और फिर आया साल 2008 का वो ऐतिहासिक दिन जब उन्होंने दिल्ली में हुए विश्व चैंपियनशिप में दुनिया को चौंकाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया और यह साबित कर दिया कि एक माँ का हौसला दुनिया की किसी भी चुनौती से बड़ा हो सकता है। आगे चलकर उन्होंने 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीती और ओलंपिक में भी तिरंगा लहराया। मैरी कॉम की यह पूरी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके भीतर अटूट इच्छा शक्ति और साहस है तो दुनिया की कोई भी दीवार, कोई भी मजबूरी आपको आपके सपने को छूने से नहीं रोक सकती। और अब इसी जज्बे को बरकरार रखते हैं एक गीत के साथ, आइए सुनते हैं।

अभी आपने सुना फिल्म मैरी कॉम का गीत जिद्दी दिल, जिसे आवाज दिया था विशाल ददलानी और जियोकोंडा वेसिचेली ने, संगीतकार शशि सुमन और गीतकार प्रशांत इगोले थे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में हरित भविष्य केवल एक विचार नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता बन चुका है, और इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है हमारे युवा। आज के युवा पर्यावरण संरक्षण के लिए नई नई पहल कर रहे हैं। कोई वृक्षारोपण अभियान चला रहा है, कोई प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का संदेश दे रहा है, तो कोई सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन हरित भविष्य केवल बड़े अभियानों से नहीं बनेगा, हम छोटी छोटी आदतों से भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे बिजली बचाना, पानी का सही उपयोग करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाना और पौधा लगाकर उसका देखभाल करना। अगर हर युवा एक छोटी जिम्मेदारी भी निभाए तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर दिखाई देगा। अब आइए सुनते हैं कि हमारे आसपास के युवा इस विषय पर क्या सोचते हैं।

0: नमस्कार, मेरा नाम सोनीता है और मैं जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरे लिए हरित भविष्य का मतलब सिर्फ ज़्यादा पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि ऐसी जीवन शैली अपनाना है जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुँचे। आज हम सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड तो जल्दी अपनाते हैं, लेकिन अगर हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता को भी ट्रेंड बना दें तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अपने घर और कॉलेज में छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की जा सकती है, जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, पानी और बिजली की बचत और अपने आसपास सफाई रखना। मुझे लगता है कि अगर हर कोई सिर्फ एक अच्छी सस्टेनेबल आदत भी अपनाए तो आने वाले समय में उसका अनुकूल प्रभाव जरूर दिखाई देगा। आखिरकार हरित भविष्य किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। धन्यवाद।
1: सचमुच हरित भविष्य की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से होती है। कहते हैं, धरती हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने उसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। इसलिए इसकी देखभाल करना हम सभी का कर्तव्य है। इसी संदेश के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर, पर उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अभी आपने सुना फिल्म हाईवे का गीत माहीवे, जिसे संगीतबद्ध और आवाज दिया था एआर रहमान ने और गीतकार थे इरशाद कामिल। दोस्तों, आज इंटरनेट पर लगभग हर जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद लाइब्रेरी का महत्व कम नहीं हुआ है। लाइब्रेरी केवल किताबों का संग्रह नहीं होती, यह सीखने, सोचने और खुद को बेहतर बनाने का एक शांत और प्रेरणादायक स्थान है। लाइब्रेरी हमें एकाग्र होकर पढ़ने की आदत सिखाता है। यह हमें विभिन्न विषयों की गहराई से जानकारी प्राप्त करने का अवसर देता है। जो छात्र परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए लाइब्रेरी एक बेहतरीन अध्ययन वातावरण प्रदान करती है। इसके अलावा पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति बढ़ाती है, भाषा को समृद्ध बनाती है और सोचने का नया दृष्टिकोण देती है। आइए सुनते हैं कि युवा लाइब्रेरी के बारे में क्या सोचते हैं।

0: नमस्कार, मेरा नाम पार्वती है। मैं अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। मेरी नज़र में पुस्तकालय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ का शांत माहौल पढ़ाई पर ध्यान लगाने में बहुत मदद करता है। जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ तो मोबाइल और दूसरी चीज़ों से ध्यान कम भटकता है। मुझे लगता है कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबें लेने की जगह नहीं है, बल्कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने की जगह है। यहाँ अलग अलग विषयों की किताबें पढ़कर हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और सोचने का नजरिया भी। आज के समय में जब ज्यादातर लोग मोबाइल पर ही समय बिताते हैं, ऐसे में युवाओं को लाइब्रेरी से जुड़ना चाहिए। अगर पढ़ने की आदत बन जाए तो उसका फायदा सिर्फ परीक्षा में ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन में मिलता है। धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि यह विचार आपको भी लाइब्रेरी से जुड़ने और नियमित पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। फिलहाल किताबों की दुनिया से निकलते हैं सुरों की दुनिया में। पेश है एक खूबसूरत गीत।

0: दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कार्यक्रम को विराम देने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख समसामयिक जानकारियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। भारत में तमिलनाडु में दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन फैसिलिटी शुरू की। ओडिशा ने पूर्वी भारत में निवेश बढ़ाने के लिए गो ईस्ट पॉलिसी शुरू की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की बातें आपको सोचने के लिए नए विचार और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा देगी। इसी उम्मीद के साथ अब मुझे यानी रेशमा और इस कार्यक्रम युववाणी को दीजिए अनुमति। फिर मुलाकात होगी इसी समय पर नए विचारों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए।

युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रमिक बंधुओं के लिए दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

श्रोता साथियों, मानसून की शुरुआत के साथ पर्यावरण हरियाली से सज जाती है। बाग बगीचे तरोताजा हो उठते हैं, मानो किसी ने उन्हें हरे रंग से धो डाला हो। दोस्तों, अभी हमारे शहर और आसपास के इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। झमाझम बारिश की आस लगाए सभी शहरवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश से उनकी धरती तृप्त हो जाए, क्योंकि श्रोताओं, ये मौसम किसानों और पेड़ पौधों के लिए लाभदायक अवसर लाता है। बारिश का मौसम गर्मी से झुलसे सभी प्राणियों में नव जीवन का संचार करता है। हमारे शहर का मिजाज जल्द ही बदले और मौसम खुशनुमा हो जाए, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का, और आप सभी को अंशु का तहे दिल से नमस्कार।

दोस्तों आज बात करेंगे उस ताकत की जो अकेले को सबसे अलग और सबको एक साथ सबसे बेहतर बनाती है। दोस्तों एक पुराना गाना है जो आपने भी सुन रखा होगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। दोस्तों ये सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि अकेले आप सिर्फ चल सकते हैं, लेकिन दूर तक पहुँचने के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत होती है। आइए एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाते हैं। दोस्तों हमारी हाथ की पांचों उंगलियाँ अलग हैं, इनका साइज अलग है, इनकी ताकत अलग है। अगर एक उंगली से किसी पर वार करेंगे तो शायद उंगली टूट जाए, लेकिन जब यही पांच उंगलियां एक साथ आती हैं तो बनती हैं एक मुट्ठी। टीम वर्क भी बिल्कुल ऐसा ही है, जब अलग अलग लोग अपनी अलग अलग खूबियों के साथ एक मकसद के लिए जुड़ते हैं।

तो वो ऐसी ताकत बनते हैं जिससे हर मुश्किल आसान हो जाती है। आप चाहे तो क्रिकेट का मैदान देख लें या कॉरपोरेट ऑफिस का बोर्ड रूम। विराट कोहली अकेले मैच नहीं जीत सकता अगर पीछे से बॉलर रन ना बचाए। एक धोनी अकेले कप नहीं ले सकता अगर बाकी बैट्समैन साथ ना दें। कंपनी का सीईओ अकेला रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकता अगर ग्राउंड स्टाफ मेहनत ना करें। तो दोस्तों, टीम का मतलब ही है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब हम मैं को छोड़कर हम पर आते हैं तभी कामयाबी का सही जश्न शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो अकेले हीरो बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने साथ के लोगों पर भरोसा कीजिए, उनकी ताकत को अपनी ताकत बनाइए। अकेले हम सिर्फ एक बूंद हैं दोस्तों, और मिलकर एक समंदर। आप सुनते रहिए रेडियो 102.4 FM।

सुखविंदर सिंह और सलीम मंचट की आवाज़ों में अभी आप चक दे इंडिया फिल्म के इस गाने को सुन रहे थे। संगीत निर्देशन सलीम सुलेमान का था और शब्द रचना जयदीप साहनी की।

0: इस गाने के बाद आई श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं उद्योगों में अग्निकांड से सुरक्षा के उपाय एवं मानदंड विषय पर। जानकारी दे रहे हैं सुमित कुमार सिन्हा। ताइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: सुरक्षा के उपाय एवं मानदंड से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि उद्योगों में या किसी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, स्कूलों में, मॉल में अथवा घर में आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है और क्या हो सकता है। वैसे तो उद्योगों में आग लगने के अनेक कारण हो सकते हैं और ये मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि उद्योग किस प्रकृति का है, जैसे तेल या ज्वलनशील गैस से संबंधित, रबर या प्लास्टिक, पटाखा उद्योग, ऑटोमोबाइल या स्टील उद्योग इत्यादि। उद्योग हो अथवा मॉल या घर, ज़्यादातर मामलों में मुख्य वजह इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ही पाई जाती है। शॉर्ट सर्किट की मुख्य वजह ज़्यादातर बिजली से चलने वाले संयंत्र का समय समय पर सर्विसिंग और मेंटेनेंस नहीं होना या अच्छी गुणवत्ता वाले बिजली के तार का उपयोग नहीं होना या तार की क्षमता से अधिक उस पर लोड देना होता है। ज़्यादातर उद्योगों में कॉस्ट कटिंग के नाम पर सामान की गुणवत्ता एवं उसके रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता और ये लापरवाही अक्सर शॉर्ट सर्किट की स्थिति पैदा करती थी। आग कितना भयंकर रूप ले सकता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उद्योग किस प्रकृति का है, वहाँ आग की पहचान कितनी जल्दी हो पाई और कितनी तीव्रता से आग को बुझाने अथवा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अब तक हमने आग लगने के कारण की बात की, अब ये जानना आवश्यक है कि आग की प्रकृति कैसी है, अर्थात आग किस चीज में लगी है। आग की प्रकृति के आधार पर इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्लास ए, सॉलिड मटेरियल जैसे कपड़ा, लकड़ी, कागज में लगी आग। क्लास बी, लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट में लगी आग। क्लास सी, गैस जैसे LPG, CNG, इथेन, मीथेन, हाइड्रोजन में लगी आग। क्लास डी, ज्वलनशील धातु जैसे पोटेशियम, अल्मोनियम, सोडियम, मैग्नीशियम में लगी आग। क्लास ई, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स जैसे बिजली के लाइव वायर में अथवा बोर्ड में लगी हुई आग। इसी विभाजन के आधार पर इनको नियंत्रित अथवा बुझाने के लिए अलग अलग तरह के छोटे, मध्यम एवं बड़े आकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। क्लास ए प्रकृति की आग के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, क्लास ए और क्लास बी प्रकृति की आग के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, क्लास बी और क्लास सी प्रकृति की आग के लिए CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, क्लास डी प्रकृति की आग के लिए पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, क्लास ए, बी और सी तीनों प्रकृति की आग के लिए ड्राई केमिकल पाउडर अथवा HFC क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ड्राई केमिकल पाउडर और पाउडर टाइप, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। जहाँ केमिकल नहीं होगा उसी फायर एक्सटिंग्यूशर को क्लास डी के प्रकृति की आग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्लास ई प्रकृति की आग के लिए CO2 टाइप या क्लीन एजेंट जैसे नोवेक 1230 या FM 200 का प्रयोग होता है। ये बहुत विस्तृत विषय है लेकिन इन विषयों की मूलभूत जानकारी भी साधारणतया बड़े बड़े अग्निकांड को रोक सकती है। उद्योगों में लगने वाली आग और उसको नियंत्रित करने के विषय पर बात करें तो 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। पहली कि आग लगने की

0: और सूचना अग्निशमन विभाग को और उस स्थान पर काम कर रहे लोगों को तुरंत होनी चाहिए, जिससे जान माल की सुरक्षा तत्काल की जा सके। दूसरी कि आग लगने वाले स्थान को तुरंत खाली करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रूप से वहां से बाहर निकल सकें। तीसरी, आग को नियंत्रित करने अथवा बुझाने के लिए उपयुक्त सुविधा एवं साजो सामान सही स्थिति में होना चाहिए। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात कि आग बुझाने वाले संयंत्र जैसे फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो वाटर बेस्ड होता है या फायर एक्सटिंग्विशर अथवा अन्य को सही तरीके से उपयोग कर पाने वाली या जानकार व्यक्ति अथवा उनकी टीम होनी चाहिए। आग लगने की त्वरित जानकारी के लिए फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसके कार्य करने का आधार धुएं को, ताप को अथवा आग की लपटों को पकड़ना होता है। आग का पता चलते ही सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो पैनल को सूचना देकर वहां से अलार्म जनरेट कर देता है। वहां अलार्म जनरेट कर जाने के माध्यम से सभी लोगों को सजग कर दिया जाता है और सभी लोग सजग हो जाते हैं। पहले कन्वेंशनल फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम का उपयोग ज्यादा होता था, लेकिन अभी एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम का उपयोग होने लगा है। ये नई टेक्नोलॉजी है। ये आग लगने की जगह की सटीक जानकारी बहुत तीव्रता से दे पाती है, जिससे आग को तेजी से नियंत्रित किया जा सकता है। कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम और एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, इन दोनों के बीच जो आधारभूत अंतर है वो सिर्फ यही है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम होने के साथ साथ इसमें कन्वेंशनल फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम में एक निश्चित और बड़े जगह की जानकारी होती है, लेकिन एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में सटीक जगह की जानकारी हो जाती है कि किस पार्टिकुलर जगह पर फायर हुआ है। इसलिए एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम का उपयोग आज ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ तक प्रश्न है अग्नि सुरक्षा के मानदंडों का, तो इसके लिए बहुत सी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, जैसे NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो ये निर्धारित करती है कि फायर अलार्म सिस्टम में लगने वाले सभी इक्विपमेंट्स वो किस आधार पर होने चाहिए, उनकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, उनका किस निश्चित नियम के आधार पर इन सारे सिस्टम को लगाया जाएगा। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो ये बताता है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स और बाकी इस तरह के जितने भी अग्निशमक हैं उनका उपयोग किस तरह से होना चाहिए, उनकी टेस्टिंग किस तरह से होनी चाहिए। EN54 ये भी फायर अलार्म सिस्टम की गुणवत्ता को ही बताने के लिए होता है। निबोश, ओशा स्टैंडर्ड इत्यादि, इस तरह की मान्यता प्राप्त संस्थाएं उद्योगों में हेल्थ, सेफ्टी और पर्यावरण तथा अग्नि सुरक्षा में उपयोग होने वाले संयंत्रों की गुणवत्ता के विषय पर गाइडलाइन और नियम बनाती हैं, और उद्योगों में इसी नियम के आधार पर अग्नि सुरक्षा संयंत्र और उपयोग निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि आग का पता चलना, ये महत्वपूर्ण होता है कि जितनी जल्दी हमको आग का पता चले। आग के पता चलने के बाद आप जिस आधार पर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, आज ज्यादा उद्योगों में ज्यादातर गैस सप्रेशन सिस्टम यूज किया जाता है। गैस सप्रेशन सिस्टम में दो अलग अलग तरह की मान्यता है। ऐसा कोई भी जगह जो मैंड एरिया न हो, वैसे जगह पर हम लोग CO2 गैस सप्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसी कोई भी जगह जैसे सर्वर रूम है, कंप्यूटर रूम है, या जो मैंड एरिया है जहां पर लोग काम कर रहे हैं, उस जगह पर काम करने के लिए या उस जगह पर फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर वो गैस आदमी के रहते हुए भी अगर फ्लड कर जाती है या गैस को डाल दिया जाता है, तो उस पर आदमी के ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और वो बहुत आसानी से उस जगह से निकल सकता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस तरह के जगह पर डाल दिया जाए तो आदमी आग से बच जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वो मर जाएगा। इसलिए ये भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि हम किस जगह पर किस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करें। अगर जगह के हिसाब से फायर सप्रेशन सिस्टम की बात की जाए, तो स्कूल में या मॉल में या किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ साथ फायर हाइड्रेंट सिस्टम निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि फायर हाइड्रेंट सिस्टम के बिना किसी भी बिल्डिंग को बनाना खतरनाक है। फायर हाइड्रेंट सिस्टम चलाने के लिए एक टीम होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल हो या कॉमर्शियल बिल्डिंग हो। आज कॉमर्शियल बिल्डिंग में या अलग अलग तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अक्सर आग लग जाती है, और ये आग ज़्यादातर एयर कंडीशन के शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। तो वहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस जगह पर फायर एक्सटिंग्विशर, सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर और फायर हाइड्रेंट सिस्टम हो। उद्योगों के लिए जो भी जिस तरह के भी मान्यता प्राप्त संस्थान ने जिस तरह का गाइडलाइन दिया है, उसके आधार पर उसका सिस्टम लगना चाहिए और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए।
1: उद्योगों में अग्निकांड से सुरक्षा के उपाय एवं मानदंड, इस विषय पर अभी आप जानकारी ले रहे थे सुमित कुमार सिंह से।

श्रोताओं भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कल कारखाने एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अंशु के साथ। हम कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में अभी आप मैंने प्यार किया फिल्म के इस गाने को सुन रहे थे। गीत लिखा था देव कोहली ने और संगीत निर्देशन राम लक्ष्मण का था। श्रोता साथियों, विधवा पेंशन योजना भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निराश्रित विधवाओं को आर्थिक सहायता देने वाली एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसके तहत 40 से 89 वर्ष की विधवाओं को मासिक 300 रुपये और 80 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 500 रुपये मिलते हैं, जिसमें राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त राशि जोड़कर प्रति माह 1500 से 3200 रुपये देती है।

श्रोताओं, इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभुकों को आयु सीमा सामान्यतः 18 वर्ष से 89 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका बीपीएल परिवार से होनी जरूरी है। यदि महिला दोबारा विवाह कर लेती है तो उनके पेंशन बंद हो जाती है। महिला को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, ऐसी स्थिति में उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है।

इस योजना से जुड़ी आवश्यक दस्तावेज हैं, आवेदिका का आधार कार्ड होना जरूरी है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो।

श्रोताओं, इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आप माई स्कीम पोर्टल या अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ऑफलाइन माध्यम के लिए आप अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय, पंचायत समिति, जिला

श्रोताओं, इन जानकारियों के साथ ही समय हो चला है कि अब हम आपसे विदा लें। हम जल्द ही मिलेंगे इसी वादे के साथ। दीजिए अनुमति अंशु को। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: Major General Gurpreet Singh, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

0: प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu presented gallantry awards at the second defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Vashne, Lieutenant General Vikas Rohela, Lieutenant General Harvinder Singh Vandra, and Lieutenant General Mohinder Pal Singh were awarded Ati Vishisht Seva Medal. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of armed forces are also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi today said that his visit to Seychelles has been full of substantive outcomes that will boost India-Seychelles friendship. In a social media post, the Prime Minister said that during the past 50 years, the relationship between the two countries has been marked by deep trust and shared progress, while the next 50 years will be defined by innovation, sustainability and shared prosperity. He also expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermione, the government and people of Seychelles for their affection. The governments of Haryana and Rajasthan signed an agreement for the construction and implementation of the Yamuna Water Project in the presence of Home Minister Amit Shah in New Delhi today. Speaking on the occasion, the Home Minister said the agreement has resolved the nearly three-decade-old water-related problem faced by the people of Haryana and Rajasthan. Under the agreement, approximately 580 million cubic meters of water will be supplied from the Yamuna Canal to Rajasthan through three underground pipelines from the next month to October. A Delhi court today extended till July 11 the judicial custody of 10 accused in the NEET UG 2026 paper leak case being investigated by the Central Bureau of Investigation or CBI. Earlier on 15th June, the Rouse Avenue Court had extended the judicial custody of the 10 accused till today. The CBI has so far arrested 13 accused in the case and is investigating an alleged network involved in procuring and circulating NEET UG question papers ahead of the examination. Foreign Secretary Vikram Misri today dismissed reports claiming that India and Pakistan held a track 2 dialogue on the sidelines of a security conference held in Sri Lanka. Responding to questions, Mr. Misri said, such interactions are neither new nor recognized by the Indian government. Foreign Secretary said that as far as the Indian government is concerned, there is no official participation, support or involvement in events like these. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom. Mr. Goyal met the Development Minister of Greece, Takis Theodorakis,

0: इसके साथ ही कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत, सभी श्रोता मित्रों को जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेयः, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदयः च पुरस्कृताः। हरियाणा राजस्थानयोर्मध्ये दशकत्रयेभ्यः विलंबितायाः यमुना जलविभाजन विवादस्य अद्य समाधानं जातम्। सर्वोच्च न्यायालयेन राममंदिर दान प्रकरणस्य कथित वित्तीय अनियमिततायाः न्यायालय निरीक्षण अन्वेषणस्य त्वरा याचिका निराकृता। सीबीएसई इत्यनेन साम्प्रतिकाय दशम वर्गाय त्रिभाषा नीतिः नानिवार्येति घोषिता। सर्वकारः व्यापारस्य सुगमतां प्रावर्धयितुं परिष्कार सूचना तंत्रं प्रवर्तयति। एसआईआर इति स्वस्तनात् देहल्यां समारप्स्यते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकांतः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने 26,000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेयः, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह बंद्रा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंहश्च अतिविशिष्ट सेवा पदकं प्राप्तवन्तः। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्यः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणः च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 राष्ट्रपति भवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथम चरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अफ्रीका देशस्य यात्रायाः तृतीय दिने सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरस्थस्य नवशक्ति विनयगर देवालयं गत्वा प्रार्थनां कृतवान्। सः तत्र भारतीय प्रवासिभिः अपि मिलितवान्। पश्चात् अद्य पीस पार्क इत्यत्र स्थितायाः महात्मा गांधिनः प्रतिमायाः उपरि पुष्पाञ्जलिमपि अर्पितवान्।

0: हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनोमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन स्वस्तनम यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रे सिक्किम प्रदेशे च प्रचंडतः अतिप्रचंड तरायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बुधवासरं यावत् अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे च प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इत्यपि ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं कृतम्। फीफा विश्व चषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजेलिस नगरे प्रथमायाः नॉकआउट इति स्पर्धायां कनाडा देशः दक्षिण अफ्रीका देशं 1-0 पराजयत्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकान्तः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान् इति वार्ताः।
2: FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम कृषि जगत के सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। मित्रों, हम उपस्थित हैं आप सबों के लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। रोज की ही भांति आज भी हम अपने कार्यक्रम में संजो कर लाए हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से।

किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की सार्थकता पर चर्चा करके करते हैं। श्रोता मित्रों, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आम जनता के लिए बेहद कारगर और फायदेमंद है। इस केंद्र में मिलने वाली जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% तक सस्ती होती है, जिससे मरीजों का इलाज कम खर्च पे हो जाता है। आपको बता दें कि इन केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं WHO GMT की गुणवत्ता जांचने के बाद ही बाजार में बेची जाती है और NABL द्वारा भी हर बैच की गुणवत्ता जांच कर ही बाजार में बेची जाती है, जो इन्हें पूरी तरह से सुरक्षित बनाती है। जो शरीर और गंभीर बीमारियों मसलन कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग आदि से ग्रस्त हैं और महंगी दवाएं नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए ये योजना काफी राहतकारी है। ग्रामीण श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि इन केंद्रों पर वर्तमान में 2100 से ज्यादा दवाएं और 3000 से अधिक सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं, जो गरीब जनता को काफी हद तक राहत पहुंचा रही है। पूरे देश में अब तक 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जो आम जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद अब आइए कुछ बातें केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियों एवं कृषकों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों की करते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 12 वर्षों में सरकार ने देश के किसानों के लिए क्या-क्या काम किए हैं और कौन-कौन सी कल्याण

कार्य योजनाएं लाई हैं, आइए इस संबंध में कुछ संक्षिप्त चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने अपने हालिया बजट और कार्यक्रमों में कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ रुपए के कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार द्वारा किसानों के कल्याण, उनकी आय बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रमुख है। इसके तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। दूसरी प्रमुख योजना है फसल बीमा योजना। इसके तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों के कारण फसल खराब होने पर व्यापक जोखिम कवर और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जबकि इसके लिए प्रीमियम मामूली देनी पड़ती है। तीसरी प्रमुख योजना है किसान मानधन योजना। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो बुजुर्ग किसानों को केंद्र सरकार के माध्यम से मिल रही है। इसके तहत किसानों को हर माह न्यूनतम 3,000 रुपए का पेंशन मिलता है, जो किसान भाइयों इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा 12 वर्षों में देश के करोड़ों किसानों के लिए कई योजनाएं लाकर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाया जा रहा है। और अब कुछ बातें किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ के विषय में। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें एटीएम कार्ड की तरह किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करा रही है। इसके तहत किसान भाई खेती, पशुपालन और कृषि उपकरण की खरीद के लिए बैंक से सीधे केसीसी के माध्यम से लोन उठा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामान्य ब्याज दर महज 7% की दर से उनको लोन मिल जाता है, और यदि उन्होंने समय पे लोन चुका दिया तो 3% और सब्सिडी दी जाती है। तो इस प्रकार उनको मात्र 4% ब्याज दर पर ही लोन मिल जाता है। केसीसी कार्ड से किसानों को लोन लेने के लिए कोई जमीन या संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। आप केसीसी कार्ड के माध्यम से सीधे एटीएम में जाकर पैसे की निकासी कर सकते हैं और जरूरत के साथ आप अपने खाद, बीज, उपकरण की खरीदारी कर सकते हैं। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं पद्मा झा।

0: ये थी पद्मा झा, जिनसे आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है स्मार्ट खेती एक जानकारी। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह, जो एनआईटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनसे बात किया है विवेकादित्य ने। लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता।
1: जोहार किसान भाई बहनों, आज कृषि जगत कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय, स्मार्ट खेती क्या है। जैसा कि सभी भली भांति से आप परिचित होंगे कि बदलते समय के साथ खेती किसानी में नई नई तकनीकों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाहे बातें मोबाइल ऐप की हो या फिर मौसम पूर्वानुमान की या फिर ड्रोन टेक्निक की। नई नई तकनीकें किसानों को बेहतर निर्णय देने में या फिर फसल उत्पादन के लागत को कम करने में या फिर उत्पादन बढ़ाने में अनेक प्रकार से सहायता करती है। इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में कंप्यूटर संकाय के प्रभारी डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह। नमस्कार महोदय, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद और सभी श्रोताओं को जोहार।
1: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बातचीत करने वाले हैं स्मार्ट खेती की, कि स्मार्ट खेती क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो कौशलेंद्र जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि स्मार्ट खेती क्या है।
2: स्मार्ट खेती समय के साथ जब हम प्रौद्योगिकी का यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी का एक एडवांस वर्सन है। और इसमें हम करते डेटा आधारित एक तकनीक है, जिसमें कि हम तीन चार तरह की प्रौद्योगिकी का यूज करते हैं, जिसमें IoT मुख्यतः IoT है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ड्रोन्स है, रोबोटिक्स है। इन चारों को जब हम एक साथ समाहित करते हैं और खेती के प्रयोग में यूज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि ये स्मार्ट खेती है।
1: जी, आधुनिकतम जो तकनीकें आजकल आ रही हैं धीरे धीरे, उन्हीं का उपयोग अगर हम खेती में करते हैं तो स्मार्ट खेती के नाम से जानी जाती हैं। अगर हम बातें करें पारंपरिक खेती की, तो यह पहले की जो पारंपरिक खेती थी और ये जो स्मार्ट खेती की आजकल चर्चा पुरजोर से हो रही है, तो दोनों में क्या अंतर है।
2: स्मार्ट खेती, जैसा कि मैंने पहले बोला कि एक डेटा आधारित रणनीति है, डेटा आधारित प्रयोग है। बट परंपरागत खेती में क्या होता था कि हमारे पास डेटा वहाँ भी होते थे, बट हमारे पास क्या था कि पुराने जो अनुभव थे लोगों के
1: जी।
2: और लोकल जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस थे, उसके आधार पर चाहे मौसम का पूर्वानुमान हो, जैसे आप लोग याद होगा कि जब पछुआ चलता है तो क्या होता है, कितने दिन बाद बारिश होगी, पूर्वा चलेगा तो कितने दिन बाद बारिश होगी, तो ये डेटा रहता था, लेकिन ये लोगों के अनुभव के आधार पर होता और उसका प्रयोग करके हम फसल लगाते थे। अब क्या हो गया स्मार्ट खेती आने के बाद, क्योंकि जैसा जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है और अभी धीरे धीरे समय, वेदर भी समय के साथ साइकिल चेंज हो रहा है, तो इस दौरान में देखने को मिला है कि जितनी भी हमारी परंपरागत चीजें हैं वो समय के साथ बहुत सटीक रूप से हमें रिजल्ट नहीं दे रही है। तो इसलिए इस केस में क्या होगा स्मार्ट खेती में, कि जैसे हम बताए कि हमें तीन चार चीजें होती है, जैसे AI है, तो AI क्या होता है कि डेटा आधारित ही होता है, बट उसमें मानव का इंटरवेन नहीं होता है, मानव का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं हमारे खेती के, जैसे सॉयल के टाइप क्या है, सॉयल की ह्यूमिडिटी क्या है, वहाँ टेम्परेचर कितना है, pH कितना है सॉइल का, इसी के साथ जैसे बारिश की, मौसम पूर्वानुमान की आपने बात की थी, तो मौसम का पूर्वानुमान क्या, वो हमको 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह पहले पता चल जाता है। उसके अलावा उस जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो इसके आधार पर हम सटीक रूप से एक डिसीजन लेंगे कि हमको किस दिन क्या करना है। और पहले परंपरागत खेती में क्या होता था कि हम जो भी काम करते, जैसे सिंचाई करते हैं, हम लोग सिंचाई से उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तो सिंचाई में क्या होता था कि अगर बारिश हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम चापाकल के पंपिंग सेट, जिसको हम लोग गांव में बोलते थे, उसके थ्रू हम लोग पानी सिंचाई, जैसे हमारे ही घर में एक खेत था, हम लोग को याद है कि 12 कट्ठा का प्लॉट था, तो उसमें ये होता था कि अच्छा 8 से 10 घंटा लगता है, तो जब 10 घंटा हो जाता था तो मेरे पिताजी जाते थे कि अब हो गया होगा, बंद कर दो पंपिंग सेट
1: जी।
2: अब उसमें हमको ये पता नहीं है कि जो पानी हमारे खेत में गया, सिंचाई हुई, उसकी जरूरत भी थी कि नहीं थी, और सारे समग्रता से एक रूप से हम पूरे खेत में सिंचाई देते थे, तो वो वेस्टेज ऑफ वाटर हुआ
1: जी।
2: लेकिन इसमें आपको क्या होगा कि आपके पास एक सेंसर हम लोग सॉयल में लगाते हैं, और सॉयल में जो सेंसर है वो बता देता है कि ह्यूमिड कितना है, यहाँ पर वाटर लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है, पीएच लेवल क्या है, उसके आधार पर फिर हमको बताया जाएगा कि सिंचाई की जरूरत यहाँ है कि नहीं है, और वो फब्बारा के रूप में देखिएगा होगा, ड्रिपिंग के थ्रू हम लोग इरिगेशन करेंगे, तो उसमें जिस जरूरत, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग, मतलब सटीक रूप से फार्मिंग करेंगे, जहाँ जिसकी जरूरत है उतना ही देंगे। सेम यही चीज होता था परंपरागत खेती में, जैसे हमने कीटनाशक का प्रयोग किए तो हम एक हाथ से उसका छिड़काव करते थे और वो कीटनाशक पूरे खेत में बराबर रूप से हम चारों तरफ देते थे, चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं हो। बट अब क्या है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करेंगे कि खेत का रियल सैटेलाइट इमेज लेते हैं, और उससे हमको ये पता चल जाता है खेत के किस पार्ट में हमको कीटनाशक देना है, और जब हम कोऑर्डिनेट उसका फिक्स करेंगे तो यूएवी के थ्रू, जो स्मार्ट एग्रीकल्चर का पार्ट है, उसके थ्रू वहां पर छिड़काव होगा। तो इससे क्या हुआ कि अगर और खेत भी बची रहेंगी तो उसको प्रयोग, कीटनाशक का भी प्रयोग कम करेंगे और एक वहीं प्रयोग करेंगे जहां जरूरत है। तो ये फायदे स्मार्ट एग्रीकल्चर के, ये फायदे हैं, और परंपरागत खेती के यही नुकसान थे। एक और इसमें बहुत परंपरागत खेती के साथ क्या है कि हमारे पास छोटे छोटे जो किसान हैं उनको फायदे होते थे, और कॉस्ट, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अक्सर बात करते हैं आमदनी
1: जी।
2: तो जो परंपरागत खेती है उसमें शुरुआत में पैसे कम लगते हैं, बट जब हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, शुरू में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है, बहुत सारे मशीन लेने पड़ते हैं, और वो लेकिन बाद में अगर लॉन्ग टर्म हम प्रयोग करते रहेंगे तो 5-7 साल के बाद लगेगा कि ये परंपरागत से सस्ता पड़ रहा है। बट परंपरागत में, परंतु परंपरागत में क्या है कि शुरू में कम इन्वेस्टमेंट है, तो किसानों के लिए वो ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो शुरू में उनके लिए फायदेमंद होता है
1: जी। हाँ, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, और एक प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ अपनी बातों को आपने हमारे किसान भाई बहनों को समझाया। और जैसा कि आपने बताया कि स्मार्ट खेती के शुरुआती चरण में हो सकता है कि कुछ पैसे हमारे किसान भाई बहनों को ज़्यादा खर्च करने पड़े, लेकिन उसका लाभ उन्हें आगे भविष्य में ज़रूर मिलता है। तो अगर इसी बात की अगर विस्तार में अगर हम चर्चा करना चाहें, तो क्या हमारे छोटे और जो सीमांत किसान जो होते हैं स्मार्ट खेती को अपना सकते हैं?
2: हाँ, अपनाया जा सकता है, बट छोटे और सीमांत किसान के साथ कुछ समस्याएं भी हैं
1: जी।
2: कि जैसे अगर हम सामूहिक रूप से अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर लें, जैसे मान लीजिए खास करके झारखंड, बिहार, ये जो पूर्वांचल के, इसमें बहुत बड़े बड़े किसान नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे सीमांत होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक यूएवी खरीद लिया, ड्रोन ले लिया, तो उसमें ये सुविधा होती है कि हम अगर जियो फेंसिंग कर दें, उसका कोऑर्डिनेट फिक्स कर दें, तो वो खेत में उतना ही एरिया में छिड़काव करेगा और फिर आपके पास रिटर्न बैक आएगा। तो ये भी एक हो सकता है कि हम 2-4-5 लोग मिलके उसका प्रयोग करें तो सस्ता भी पड़ेगा और हमारे लिए फायदेमंद भी होगा। तो इस तरह से भी हम लोग किया जाए, मतलब इस तरह से हम लोग स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपना सकते हैं।
1: और अगर जो हमारे किसान भाई बहन स्मार्ट खेती की ओर अपने कदम को बढ़ाएंगे तो उम्मीद है कि उन्हें फसल उत्पादन में इसका परिणाम उन्हें अच्छे रूप में देखने को जरूर मिलेगा।
2: हाँ। उत्पादकता बढ़ेगी, लागत भी, एट द एंड लागत भी कम होगा, और जो फसल की क्वालिटी जिसको बोलते हैं वो भी इम्प्रूव होगा
1: जी।
2: क्योंकि हम वहीं पर प्रयोग कर रहे हैं जहां जरूरत है। एक बड़ा बढ़िया बोला जाता है, बहुत अच्छा बोलते हैं कि 4 R स्मार्ट एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि राइट इनपुट, मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आए वो सही हो, राइट इनपुट एट राइट प्लेस, कि मतलब राइट इनपुट है, राइट जहां जरूरत है वहां दिए, इन राइट टाइम, कि टाइम भी मेरा, जैसे बहुत बार होता पहले क्या था कि अब हम आधारित जस्ट 4 दिन बाद, अब 4th दिन हो गया श्रावण का, 5वां दिन श्रावण का हो गया, हाथिया नक्षत्र आएगी तो पानी बरसेगा, तो वो चीजें नहीं रहेंगी क्योंकि मौसम शिफ्ट हो रहा है, मौसम

0: हो रहा है,
1: जी
0: तो वो चीजें हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर से उसकी कमी होगी और उत्पादकता बढ़ेगी।
1: हाँ, यानी कि स्मार्ट खेती को अपना करके जो जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं,
0: हाँ
1: किसान भाई बहन अपनी फसल को उससे
0: एकदम,
1: सुरक्षित रखने में।
0: जलवायु परिवर्तन में मतलब क्या कि जैसे हमने बताया कीटनाशक का प्रयोग कम करेंगे तो उसका भी जलवायु पर असर पड़ता है, जमीन की फर्टिलिटी है उसको भी हम बचा पाएंगे, तो उससे फायदे हैं कि हम जलवायु परिवर्तन में भी सहयोग करेंगे उसको बचाने के लिए।
1: जी, और अंत में चलते चलते हमारे किसान भाई बहनों को स्मार्ट खेती के बारे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
0: नहीं, हम संदेश यही देंगे कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना सीखें। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि आसान चीज़ें जो है यूट्यूब चला रहे हैं ये, तो उसको हम प्रयोगात्मक रूप से अपने लिए यूज करें, और जो लोग सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, सामूहिक रूप से ग्रुप में बना के अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा।
1: यानी जो सहकारिता की जो
0: हाँ
1: बातें की जाती हैं।
0: हाँ सहकारिता इसमें बहुत, जैसे सीमांत और छोटे बड़े लोग जो किसान हैं उनके लिए तो ठीक है, बट छोटे लोगों में ये बहुत फायदेमंद होगा। छोटे किसान जो हैं जिनके पास कम खेती है उनके लिए फायदेमंद होगा।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह जी आपने। किसान भाई बहन, अभी आप सुन रहे थे स्मार्ट खेती क्या है और इसे हम कैसे अपना सकते हैं जिससे हमारे फसल उत्पादन में वृद्धि में एक अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। इसी विषय पर एक खास बातचीत को और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह, जो कि कंप्यूटर संकाय के प्रभारी भी हैं। डॉक्टर साहब, आपने स्टूडियो में आकर जो बहुमूल्य वक्त दिया और जो बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद, सबको धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, स्मार्ट खेती एक जानकारी, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह, जो NIT जमशेदपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कंप्यूटर संकाय के ये प्रभारी भी हैं। हम समझते हैं इस जानकारी से हमारे किसान भाई अवश्य लाभान्वित होंगे। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ संदेश।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

और अब कार्यक्रम के अंत में चलते चलते कुछ बातें पोल्ट्री फार्म से होने वाली आय की। किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्म व्यवसाय शुरू करने के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहले व्यवसाय का प्रकार, अंडा देने वाली मुर्गियां या मांस के लिए ब्रॉयलर का चयन करना होता है। इसके बाद उचित स्थान का चयन करें और स्थानीय पशुपालन विभाग से लाइसेंस और सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये व्यवसाय आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दूं कि ब्रॉयलर फार्मिंग मांस चिकन के लिए 5 से 6 सप्ताह में मुर्गियां तैयार हो जाती है, जबकि अंडे देने वाली मुर्गियां 18 से 20 सप्ताह में अंडे देने लगती है। इस व्यवसाय को हमेशा रिहायशी इलाकों से दूर, हवादार और शांत जगह पर शुरू करनी चाहिए। जमीन पर बिजली, जनरेटर, स्वच्छ पानी के साथ जल निकास की भी उचित व्यवस्था रहनी चाहिए। आप समय समय पर टीकाकरण भी अपने मुर्गियों को करवाते रहें, जिससे मृत्यु दर कम होगी और लाभ दोगुना होगा। और अंत में कुछ बातें आपकी सेहत की। आप बदलते मौसम में खुद को कैसे स्वस्थ रखें? चूंकि आपको दिन भर खेतों में काम करना पड़ता है, इसलिए शरीर में पानी की कमी ना होने दें। धूप से बचने के लिए सूती और हल्के कपड़े पहनें और सिर व मुंह को ढक कर रखें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेते रहें। इन सारी बातों का ध्यान रखकर हमारे किसान भाई इस बदलते मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं और कृषि कार्य कर सकते हैं। और इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि जगत आज यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हुए हैं, अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

0: भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र, कहा सभी मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का करे कार्य। राज्य के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव नहीं हुए उपस्थित, दोनों ने जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय। झारखंड उच्च न्यायालय में भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई। विभागीय सचिव को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। पलामू में अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, मेडिकल टीम जांच में जुटी। मृतकों के विसरा को जांच के लिए रखा सुरक्षित। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के खेलगांव में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1042 नवचयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 274 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, 768 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा विज्ञान विषय के सहायक आचार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मिलकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करें।
1: जहां हमारे सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय उसके पैरेलल हम लोगों ने खड़ा किया। और आज जहां 9,000-10,000 सीटें हैं, 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन आता है उसमें फॉर्म भरने के लिए। सरकार की चीजों पर, सरकार की व्यवस्था पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको कितना बेहतर कर सके इस पर हमें काम करना है।
0: झारखंड में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन पर पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को भी 30 जून को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री और उनके बेटे ने ईडी को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। गौरतलब है कि इस मामले में जांच एजेंसी ने इससे पहले 23 अगस्त 2023 को रोहित उरांव के रांची आवास स्थित 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे स्वयं 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करें। अदालत ने यह भी कहा कि यदि पिछली सुनवाई के बाद इस मामले में कोई नई प्रगति हुई है तो उसकी विस्तृत जानकारी भी शपथ पत्र में उपलब्ध कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज धनबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का जायजा लिया। उन्होंने यहां निर्देश दिया है कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। फर्जी दस्तावेज के जरिए नाम जुड़वाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी में वैसे मतदाता भी आते हैं जो दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता हासिल कर चुके हैं लेकिन भारत की मतदाता सूची से अपना नाम नहीं हटवाया है। विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र

0: भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।
1: कल से आपका एनुमेरेशन फॉर्म फिल करने वाला कार्यक्रम यहाँ से शुरू होगा।
2: यहाँ पहले इंडिया में था भारत नागरिक, यहाँ से दूसरा देश जाके वहाँ नागरिकता प्राप्त कर लिया, उनका नाम भी आएगा नहीं। बाहर का देश से इंडिया में आया, उनका अभी तक यहाँ नागरिकता प्राप्त नहीं हुआ, उनका नाम भी नहीं आएगा। एसआर प्रोसेस है केवल यहाँ का भारत का नागरिक के लिए।
0: जामताड़ा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई और छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई। इस दौरान भागवत झा आजाद इंटर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. श्यामली फौजदार ने कहा कि छात्र छात्राओं द्वारा अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
3: हमारे महाविद्यालय पर SIR को लेकर जागरूकता कार्यशाला एवं रैली निकाली गई। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मतदाता सूची, छात्र छात्राओं को नागरिकता के बारे में बताया गया। इस दौरान उन्हें अपने तथा अपने आस पड़ोस के लोगों को SIR को लेकर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।
0: नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। CBI ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और परीक्षा से पहले नीट यूजी प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने और प्रसारित करने में शामिल एक कथित नेटवर्क की जाँच कर रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सल संगठनों की ओर से मनाए जा रहे दमन विरोधी सप्ताह के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने ऑपरेशन ट्रैक हॉक के तहत 25 जून से चक्रधरपुर और मनोहरपुर रेलवे स्टेशनों के बीच नक्सल प्रभावित रेलखंड में ड्रोन के माध्यम से विशेष निगरानी एवं क्षेत्र प्रभुत्व अभियान शुरू किया है। आज जारी बयान में रेलवे प्रशासन ने बताया है कि विशेष सुरक्षा अभियान का उद्देश्य हर स्तर पर रक्षा सुनिश्चित करना है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और निगरानी व्यवस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाया गया है। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में अज्ञात बीमारी से आज तड़के 5वीं मौत हुई। इसके साथ ही पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रिम्स में इलाजरत कुछ अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित परिवार को इलाज के लिए 4 बार रेस्क्यू किया गया। वहीं मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर आरके रंजन ने बताया कि सभी मृतकों के विसरा को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। धनबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने भूली बाईपास रोड स्थित एक मैरिज हॉल को अवैध निर्माण घोषित करते हुए इसे तोड़ने का आदेश जारी किया है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने जानकारी दी कि निगम ने भवन मालिक को 15 दिनों के भीतर खुद निर्माण हटाने का निर्देश दिया है।
4: हम लोगों ने उनको 15 दिन का टाइम दिया हुआ है कि वो स्वतः उसको डिमोलिश कर लें, और अगर 15 दिन में स्वतः डिमोलिश नहीं करते हैं और जो एक दूसरा है कि 10 लाख रुपए का फाइन जो लगा है, अगर वो नहीं करते हैं उसके बाद हम लोग उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करें। बाकी अदर अपील कर सकते हैं, वो कोर्ट्स में जाके अपील कर सकते हैं, पर ये उनको प्रॉपर 2 महीने का प्रॉपर टाइम दिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई।
0: पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यह यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। धनबाद के जगन्नाथ मंदिर में आज धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की स्नान यात्रा पवित्र जल से संपन्न होने के साथ ही वे 15 दिनों के लिए अज्ञातवास में चले जाएंगे। इसके बाद 16

0: जुलाई को धार्मिक विधि विधान के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी।
1: सुबह शिवाजी से पूजा के बाद भगवान ने रत्न सिंहासन छोड़कर अपना स्नान मंडप में 108 घड़ा जल से सुगंध से स्नान करेंगे। 5 बजे के बाद अज्ञातवास जाएंगे। 15 तारीख को नेत्र उत्सव बना जाएगा और 16 तारीख को रथ यात्रा होगा।
0: मौसम विज्ञान केंद्र ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, सभी मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का करें कार्य। राज्य के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव नहीं हुए उपस्थित। दोनों ने जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय। झारखंड उच्च न्यायालय में भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई। विभागीय सचिव को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। पलामू में अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मेडिकल टीम जांच में जुटी। मृतकों के विसरा को जांच के लिए रखा सुरक्षित। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले के सभी 2403 बूथों पर पल्स पोलियो की दवा बच्चों को पिलाई गई। डीसी राम निवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बजटो गांव में बच्चों को दो बूंद दवा पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। सिविल सर्जन ने बताया कि 29 एवं 30 जून को घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी 4,91,000 से अधिक बच्चों को पोलियो मुक्त भारत के लिए दवा पिलाएंगे।
2: एनआईडी के तहत गिरिडीह जिले में दिनांक 28 से 30 तारीख तक पल्स पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाएगी। 28 तारीख को जो हमारे बूथ है गिरिडीह जिले के, टोटल जो बूथ है 2,337 बूथ, उस पर बच्चों को जो 0 से 5 साल के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन, जो अभी BOPV बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की दो बूंद दवाइयाँ दी जाएगी। 29 और 30 तारीख एक कार्यक्रम डोर टू डोर किया जाएगा।
1: भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पाकर गरीब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। भंडारीडीह की रजिया इस्लाम और उनके पति इस्लाम कहते हैं कि सरकार ने उन्हें गैस, अनाज, आवास सब कुछ दिया है।
3: मेरा नाम इस्लाम है, फ्री चावल दे रहा है, गैस तो मिल ही रहा है, सरकार से बहुत खुश है।
4: नाम रजिया इस्लाम, पहला काटी जलाते थे, अब गैस मिल गया तो गैस से आराम हो गया, खाना बना के दे देते हैं टिफिन जल्दी जल्दी करके, धुआं से धक्का से बचते हैं, बीमारी से बचते हैं। घर दिया है, गैस दिया है।

0: सरकार को धन्यवाद देते हैं।
1: गिरिडीह जिले के पीरटाल प्रखंड की महिलाएं मोटे अनाज से मिठाई बनाकर बेच रही है। इस काम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रही है।
2: मैं यहाँ की एक किसान हूँ और हम लोगों का जो मुख्य फसल हुआ करता था गांव का, वो धान उगाते थे चावल के लिए। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ मड़ुआ का बहुत अधिक उत्पादन हो रहा था और उस उत्पादन के बाद हम लोग क्या करते थे, मड़ुआ को डायरेक्ट बाजार में ले जाके सेल कर दिया करते थे। लेकिन अभी हम लोगों के यहाँ एक रुद्रा फाउंडेशन नाबार्ड के द्वारा बहुत बढ़िया प्रशिक्षण दिया जा रहा है मड़ुआ से अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने का, जैसे कि मड़ुआ की बर्फी, मड़ुआ के लड्डू, मड़ुआ का केक, निमकी। इसी तरह बाजरे से भी अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है बनाने का, तो हमारे कौशल का भी विकास हो रहा है।
1: गिरिडीह जिले के किसान अशोक वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें प्रारंभ से मिलते रहा है। इस राशि से उन्हें खेती करने में आसानी होती है।
3: अशोक वर्मा, पंचायत पांडेडी, प्रखंड गिरिडीह, जिला गिरिडीह का एक किसान हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुझे साल भर में 2,000 रुपया करके शुरुआत से ही मिलते आ रहे हैं। इक्कीसवां किस्त भी मिला है और इस पैसे से हम किसान वर्ग खेती कार्य के लिए खाद, बीज व अन्य उपकरण का में खर्च करते हैं और इससे हम सभी को लाभ भी मिला है।
1: गिरिडीह जिले में पुलिस प्रशासन और आम लोगों की तत्परता से मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने शांति समिति की थाना से लेकर जिला स्तर तक की बैठकें की थी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
4: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

FMK 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:16 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:45 हुए हैं। फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: डॉक्टर आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध

0: अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। हीरो फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

उदित नारायण की थी, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी नुसरत फतेह अली खान ने। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए इंदीवर का लिखा, राजेश रोशन का संगीत बद्ध किया फिल्म कोयला का ये गीत।

मृत्युदाता इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था समीर ने, धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने, आवाजें मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की थी। बंटी और बबली फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में। बोल हैं गुलजार के संगीत से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना थी जावेद अख्तर की, संगीत निर्देशन विशाल शेखर का, आवाजें थी सुनिधि चौहान और गायत्री अय्यर की। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं धड़क फिल्म का गीत, जिसे गाया है अजय गोगावली ने, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अजय अतुल ने।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने

0: के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक

0: ऐसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत एमएसएमई क्षेत्र है। एमएसएमई न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली है, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए
0: जी।
1: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
0: जी,
1: और कोलेटरल देना एक समस्या

0: समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलैटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने दी
1: है।
0: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी हमें देनी थी, और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
0: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा, पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है, और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटी हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
0: आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और

0: कोलैटरल फ्री लेंडिंग
1: जी आपको
0: जो है आप उसकी सुविधा
1: जी हाँ बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहाँ तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये है कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
1: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME के लिए लोन लेने का, तो कितने प्रतिशत में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, RBI की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8-10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं अगर आप प्रोसेसिंग में हैं तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा
1: जी। मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार,
3: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
1: जी।
3: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न हैं कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए, थैंक यू।
0: राशिद जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं MSME में और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है

0: की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है और इन्वेस्टमेंट इन
1: जी
0: प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया है। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो
1: खो
0: देंगे
1: देंगे
0: और ये जो बेनिफिट एमएसएमई के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे।
1: जी
0: तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
2: मैम मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं? क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं
1: जी
2: हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग भी शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा। शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है
1: शायद
0: उसका।
1: उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं या नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह
0: जी
1: से?
0: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना
1: जी
0: चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 एमएसएमई हमारे साथ पंजीकृत थे।
1: जी
0: और ऐसे बहुत से एमएसएमई थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार
1: सर।
0: फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू द माइक्रो स्मॉल एंड
1: जी
0: मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो SMA 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो SMA 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया
1: और
0: जाता है।
1: अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी
0: वो भी काफ़ी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो क्लीन चलें। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपको सहायता दी जाए।

0: हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
1: संजीव मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनको भी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेजेस इनमें एमएसएमई में कितनी निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ, के जो मजदूर काम करते हैं इनमें उनको और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती है?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनके अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
0: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
2: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
0: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी
0: नमस्कार, सवाल पूछे।
3: ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं। अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
2: जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं, और हमारे एमएसएमईज जो है वो लार्जर कॉर्पोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि RBI रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है।
0: जी, जी।
2: और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो 1800-1800-6763 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
0: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी
4: हेलो
0: जी, हाँ अपना सवाल पूछे।
4: हाँ नमस्ते मैडम
0: जी।
4: हेलो
0: जी, हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल।
4: अच्छा, एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
0: जी
4: सिलाई का, तो उसमें हमारे पे दो कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है
2: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
0: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
2: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
0: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनीश, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
2: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था, ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है, इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी, ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
0: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था, 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था, 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को ₹15,000 का टूल किट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी
0: जी, तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं MSME। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: धन्यवाद प्रियंका जी।
5: नमस्कार,
6: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म जीत में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक को। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मनोहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फिल्म है अमृत, बोल है आनंद बख्शी के, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, मनोहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आपने सुना फिल्म अमृत का गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए जलीस राशिद का लिखा साजिद वाजिद का संगीत बद्ध किया गीत। आवाजें हैं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की। फिल्म है क्या यही प्यार है।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके तहत आइए आज सुनते हैं सितार वादन। कलाकार हैं पंडित

0: राग चंद्र कौंस में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन। इसके साथ ही हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र

0: विभागों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीब आबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of our armed forces, were also present on the occasion. A report.
0: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Y. Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice